0: Special Injury Law Partner, the Law Offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
12: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट। मेक योर गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क। Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: बावड़े हो गए क्या? आपने कभी ऐसी जाट वाली भाषा में बोला बावड़े हो गए क्या? मुझे तो ये बोल के ना दिल्ली की बड़ी याद आ जाती है, घड़ी बावड़ी सुन के ही, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ये वाला हरियाणवी वाला जो एक्सेंट है ना इज ऑलवेज देयर, इट्स लाइक सराउंड्स यू लाइक एटमोसफियर. तो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू आर गिव अवे. नॉर्मली हम गिव अवे खेलते हैं साउंड्स लाइक गेम, विच इज मैं एक बाहर से कोई गाना बजाती हूँ एंड देन यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड सॉन्ग दैट इट साउंड्स लाइक एंड देन यू विन योर प्राइज. लेकिन वो खेलने से पहले आज हम बोलते हैं कि हमारा गिव अवे है क्या. डिनर टाइम है तो दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन दिस गिव अवे. दिस गिव अवे इज फ्रॉम फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार. आर यू लुकिंग फॉर अ लंच बफे दैट गोज बियॉन्ड द टिपिकल एंड द यूजुअल? भाई फ्यूजन रिपब्लिक दे आर इन रिचर्डसन एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट्स फैब्यूलस अमेजिंग फ्यूजन फ्लेवर्स टू अर्विंग विद अ ब्रांड न्यू लोकेशन. दे हैव अ 25 आइटम लंच बफे अमेजिंग फीचरिंग चाट्स, तंदूरी प्लेटर्स, बोल के मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, एग्जॉटिक फ्लेवर्स एंड फेवरेट्स लाइक सीरागा सांबा मटन बिरयानी. ओए होए कितना धमाकेदार नाम है यार, सीरागा सांबा मटन बिरयानी, एप्रिकॉट मलाई कोफ्ता, ओए होए होए होए चिली पनीर बाओ. अगर आपको नहीं पता बाओ क्या है, इट्स लाइक अ स्टीम्ड, इट्स लाइक अ मोमो टाइप बट थिकर, बट इट्स लाइक अ बन बट स्टीम्ड, उसके अंदर चिली पनीर भरा हुआ है. ओए होए बुर्राटा चिकन टिक्का, वाह चिकन टिक्का के ऊपर बुर्राटा चीज एंड सो मच मोर. मेरे तो बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है. आई हैव टू गो चेक दिस आउट, दिस प्लेस साउंड्स लाइक माई काइंड ऑफ प्लेस. एंड डिनर इज ऑल्सो अवेलेबल आला कार्ट. तो अगर आपको बफे नहीं खाना है, लंच बफे नहीं खाना है, देन यू कैन जस्ट गो एंड ऑर्डर योर फेवरेट डिशेज फॉर डिनर. ठीक है, फ्यूजन रिपब्लिक में अगर आप जीत जाते हैं गिव अवे देन वॉट कैन यू विन? ओनली वन गिव अवे है. ठीक है, और आपको मिलेगा श्री सी रागा सांबा और दम मटन बिरयानी, सम काइंड ऑफ अ मटन बिरयानी या फिर वेज दम बिरयानी, अमेजिंग. तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई बिकॉज वी ऑलवेज लव फ्री बिरयानी और फ्री फूड, डोंट वी? वेयर आर दे लोकेटेड? दे आर लोकेटेड एट 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड इन अर्विंग. ठीक है, तो आज का गेम है मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, और आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ अ व्हाट मूवी द नेम ऑफ द मूवी, कौन सी मूवी का स्टोरी है ये. ठीक है, इफ यू आर ए 90s फैन दिस इज एन आइकॉनिक 90s स्टोरी, यू आर नॉट गोइंग टू मिस इट. ठीक है, चलिए खेले. तो मैं आपको जनरली मैं कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बता रही. सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज दिस इंजीनियर पर्सन हु यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री. ठीक है, और उस फैक्ट्री की जो मालकिन थी, नहीं लेट्स कम बैक टू दैट. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज दिस इंजीनियर जो एक फैक्ट्री में काम करता था. अब उस इंजीनियर को एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, और वो उससे शादी कर लेता है. दैट लड़की, भाई आप अगर कॉल करें यू हैव टू होल्ड ऑन योर कॉल. मैं अपनी स्टोरी तो खत्म करूं फिर आप कॉल करके कोई रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं. अभी हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, सो डोंट कॉल. ठीक है, आप अगर आपके पास आंसर है देन यू कॉल आफ्टर लिसनिंग टू द फुल स्टोरी. तो एक लड़का है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की कम्स फ्रॉम अ रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिली, बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं होती, लेकिन वो भी कहती है नहीं नहीं ठीक है हम प्यार में हैं, हम चलो शादी कर लेते हैं. लड़का कहता है देखो भाई मैं तो सिंपल सी नौकरी करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, तो अगर तुम्हें क्या बोलते हैं अगर तुम्हें ये सब पसंद है देन इफ़ यू आर ओके विद इट देन वी कैन गेट मैरिड. तो वो लड़की कहती है ठीक है मुझे ज़्यादा पैसे वगैरह की जरूरत नहीं है, आई नो आई कम फ्रॉम अ यू नो मिडिल क्लास काइंड ऑफ अ फैमिली एंड यू आर ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास, तुम्हारे पास बेसिक चीज़ें नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, कोई बात नहीं वील मैनेज क्योंकि हमारा प्यार है. तो उनकी शादी हो जाती है, दो बच्चे होते हैं एंड सो ऑन देयर लाइफ गोज. फिर धीरे धीरे करके द लड़की इज ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव देयर लाइफ. वो पैसे जमा करती है, पैसे जमा करके अपने हस्बैंड के बर्थडे पर उसके लिए रेडियो लाती है. हस्बैंड बड़ा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं तुमने कैसे पैसे जमा किए, मुझे ऐसा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें नहीं पता पसंद है हमारी सिंपल सी लाइफ देन यू शुडंट हैव मैरिड मी वगैरह वगैरह. तो उसके बाद लड़का जिस फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री के मालिक की जो बेटी है उसको लड़के से प्यार हो जाता है, और वो कहती है कि शी गोज टू द वाइफ एंड शी गोज लाइक, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी, आई वॉन्ट टू बाय योर हस्बैंड. तो वो लड़की कहती है ओके डन डील, आप मेरे हस्बैंड से शादी कर लो, आई डोंट माइंड, यू कैन लिव यू नो लाइक माई लिटिल सिस्टर, वी कैन लिव इन द सेम हाउस. तो दैट इज द स्टोरी. अब आप मुझे बताइए कि मूवी का नाम क्या है. ओके भाई, हम मेरे पास ऑलरेडी कॉल आ रही है, आई एम 100% श्योर दे आर नॉट कॉलिंग फॉर द गिव अवे, बट आई विल स्टिल आंसर दैट. तो अगर आपके पास ये आंसर है, कॉल मी एट 972-235-5555. ओके एंड हियर वी गो, लेट्स लिसन टू आवर फर्स्ट कॉल. ओके हाय, कैन यू हियर मी?
1: हेलो.
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: यस यस
0: ओके, आपके पास आंसर है?
1: यस है.
0: ओके गुड, गो फॉर इट. पहले तो अपना नाम बताइए और दूसरा आंसर बताइए.
1: मेरा नाम हामिद है और आंसर जुदाई.
0: अरे वाह हामिद जी, आपने तो बड़ी देर से कॉल कर रहे हैं और मैंने तो सोचा कि आपने क्वेश्चन भी नहीं सुना शायद, बट हामिद जी क्या बात है, सही है, बहुत सही जवाब. हामिद जी आप जीत चुके हैं फ्यूजन रिपब्लिक से एक बिरयानी, आप कोई सी बिरयानी ले सकते हैं. तालियां तालियां.
1: थैंक यू थैंक
0: तो
1: यू.
0: हामिद जी लाइन पे बने रही है, मैं एक गाना लगाती हूँ, देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है?
1: थैंक यू. श्योर.
0: ओके तो गाइज आप ये गाना सुनिए एंड मैं हामिद जी का इन्फॉर्मेशन.
1: थैंक
0: ओके

तो गाइज गिव अवे जीत चुके हैं. रील देखी, उसमें आया मतलब दे ट्राई टू क्रिटिकली एनालाइज द मूवी. जब मूवी शुरू में आई थी ना, जब व्हेन इट फर्स्ट रिलीज, हम सब ने मूवी को इतनी गाली थी. मैंने कहा, हमने बोला कि नहीं, श्रीदेवी का कैरेक्टर इतना मनी माइंडेड है, अपने पैसों के लिए उसने अपने हस्बैंड को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंड एवरीबडी पुट समहाउ श्रीदेवी इन अ रियली बैड लाइट. बट आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, चलो हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके पूरे टाइम में, पूरे इतने सालों में भी श्रीदेवी ने बड़ी मेहनत करी. मतलब 10-15 साल जितनी भी उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, शी ट्राइड सो मैनी थिंग्स टू मेक देयर लाइफ बेटर. वो पैसे थोड़े थोड़े जमा कर रही है, उसने साइड में बिजनेस शुरू कर लिया, कुछ कुछ कुछ कर रही है वो, यू नो, शी इज़ लाइक रियली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ. लेकिन हर बार वो कुछ अच्छा करती है, यू नो, टू फील गुड अबाउट हर सेल्फ. लाइक शी इज़ लाइक, चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई. शी इज़ ट्राइंग टू बी एन इक्वल पार्टनर. बट हस्बैंड की ईगो बीच में आ जाती है और कहते हैं, नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो मेरे से शादी क्यों करी. भाई, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अपनी बीवी को कि नहीं यार, तुम तो बहुत अच्छा करी हो, आई लव द एफर्ट्स दैट यू आर ट्राइंग, हस्बैंड उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. तो आई थिंक दोनों ही मतलब देवा, और मतलब मजबूरी में आके बाय द एंड ऑफ इट उसने गिव अप ही कर दिया. कहती है, ले तू मेरे हस्बैंड को ले, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट आउट ऑफ दिस मैरिज. शी डिडंट वांट टू डिवोर्स हर हस्बैंड बिकॉज मे बी शी हैड हर टू किड्स एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द किड्स आई थिंक, एंड शी वांटेड अ बेटर लाइफ फॉर हर ओन किड्स. अपने बच्चों के लिए उसको लाइफ अच्छी चाहिए थी. उसने बोला, मुझे पैसे मिल रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस तो पैसे से ही भरेंगे ना, सिर्फ प्यार के इतने ख्याली पुलाव से तो नहीं फीस भरती बच्चों के, और बच्चों की नेसेसिटीज़ भी बढ़ती है, मतलब कॉलेज जाना होता है, ये जाना होता है. तो व्हेन शी हैड द अपॉर्चुनिटी, और हस्बैंड ने उसको विलन बना दिया, और सब ने उसको विलन बना दिया. आई मीन, थिंक अबाउट इट, डू यू रियली थिंक शी इज़ द विलन, और डू यू रियली थिंक दैट द हस्बैंड वॉज वन निकम्मा हु डिडंट रियली डू एनीथिंग. इन माई ओपिनियन, आई डोंट नो, आई थिंक देर इज नोबडी इज़ परफेक्ट, देर वर फ्लॉज ऑन बोथ साइड्स इन माई ओपिनियन. However, this is not what we are doing over here. Let's move on. Guys, dinner time ho chuka hai. Agar aapne abhi tak dinner nahi kiya hai, today is the perfect opportunity to go to Page 3 Eatery. Yes, they are right here on Hub 121. They have sizzling kebabs, flavorful chaats, fusion bites, mocktails. अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है किया है, देन यू नीड टू गो एंड ट्राई आउट दैट फूड. दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. चाहे वो ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, फूडी मीटअप, व्हाटएवर योर हैंग इज, पेज 3, दे ब्रिंग द परफेक्ट मिक्स ऑफ एनर्जी, फ्लेवर एंड वाइब्रेंट वाइब्स. ओके, तो विजिट पेज 3 ईटरी एट hub121.com. ओ नो, एट hub121.com. सॉरी, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया, लेकिन अगर आप, इट फील्स लाइक अ वेबसाइट, नो, hub121.com. तो अगर आप 4 सितंबर को जा रहे हैं, जो निकल चुका है अनफॉर्चुनेटली, 4 सितंबर को 5 बजे के बाद देवर सर्विंग फ्री श्रीखंड जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर. लेकिन जन्माष्टमी तो हो गई ख़त्म, 4 सितंबर भी निकल गया, तो वो मौका आपके हाथ से अनफॉर्चुनेटली चला गया है. लेकिन खाना अभी भी वहाँ पे बहुत बढ़िया है, तो यू शुड गो डेफिनेटली चेक इट आउट. आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्ले द सॉन्ग. मैं आपके साथ सिर्फ रहने वाली हूँ आधे घंटे और. ओके, बाय, कम बैक फॉर मोर.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे। तारा

0: Exceptional customer service. Tara Commercial Energy, powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, जो आपके business को रोशन रखे.
1: How may I help you?
2: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
1: Fear not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sadia.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
1: Alright guys, I'm only here with you for another 30 minutes. Like, this song goes out to Zimran. Zimran, I hope you enjoy the Sunday and the upcoming week. This is for you, my bandhu.

वो गाना तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन भाई आप अपने जिंदगी का भी ध्यान रखिए, अपने आप का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. अभी उनकी नई लोकेशन खुल गई है, विच इज़ कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को. दे आर लेड बाय मनदीप आचार्य. दे ब्रिंग अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज और भी बहुत कुछ, इन हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, सब एक रूफ के अंडर. दे आर ओपन 7 days a week, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक. यू कैन वॉक इन एनी टाइम. ओके, सो टेक्सास प्राइमरी मेडिकल केयर और लनॉक्सी मेडिकल केयर.

भाई अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं देन यू नीड टू चेक आउट तारा कमर्शियल एनर्जी, क्योंकि अगर यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन देन तारा कमर्शियल एनर्जी दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस 2002 से, और उनकी रेट्स बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है, रिलायबल सर्विस है एंड दे हैव कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. ओके, तो डोंट फॉरगेट, मेक श्योर यू एक्चुअली गो चेक आउट तारा कमर्शियल एनर्जी. कॉल 844-428-2808 और विजिट तारा एनर्जी डॉट कॉम टू डे, बिकॉज यू नो वट, दे माइट गिव यू अ बेटर स्मार्टर चीपर सोल्यूशन टू योर एनर्जी प्रॉब्लम्स.

भाई 7:46 हो गए हैं, मैं आपके साथ सिर्फ 10-15 मिनट ही रहने वाली हूँ, लेकिन डिनर टाइम अभी भी चल रहा है गाइस। और अगर आपने डिनर नहीं किया है देन यू कैन ऑल्सो हेड डाउन टू द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को। उनका वीकेंड लंच बफे है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तो खत्म हो गया, अगले वीकेंड के लिए आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। दे हैव माउथ वाटरिंग डिशेज, लाइव काउंटर, शेफ स्पेशल एंड बहुत कुछ, एंड ऑल ऑफ दिस ओनली फॉर 24.99। तो बफे आप इंजॉय कर सकते हैं सैटरडे और संडे को फ्रॉम 12 बजे से 3 बजे तक। बहुत सारा खाना मिलेगा। आई थिंक इट्स वर्थ द ट्रिप। टेक योर फैमिली फ्रेंड्स एंड मेक द वीकेंड डिलिशियस एट द फ्लेवर लाउंज ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। एग्जैक्टली गाइज। तो आई होप यू एंजॉयड आज का छोटा सा हमारा शो। नॉर्मली मैं 3 घंटे रहती हूँ, आज मैं सिर्फ 2 घंटे हूँ, और इसीलिए हम बातें कम करेंगे और गाने ज़्यादा सुनेंगे। तो आप इन्जॉय करें ये वाला गाना एंड आई विल सी यू टूमोरो एट 7 PM। दिस इज़ इपी द हिपी साइनिंग ऑफ।

चलो यारो दोस्तों, टाटा बाय बाय। आई होप यू इंजॉयड आज का शो। मैं आपसे मिलूंगी कल। अभी पता नहीं कौन आने वाला है 8 से 10 बजे तक, बट आई होप यू हैव हैड ए वंडरफुल वीकेंड, एंड टुमारो लेट्स स्टार्ट द वीक ऑन ए फ्रेश नोट। बाय, दिस इज एपी द हिपी साइनिंग ऑफ, एंड यू आर लिसनिंग टू पन एशिया रेडियो 104.9 FM।

0: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे बदमाश हमारी पत्नी बनकर.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वन ऑफ दोस एवरग्रीन सॉन्ग्स जो कभी भी आप सुनो एकदम दिल मस्त मस्त गार्डन गार्डन हो जाता है. ऑल राइट, सो मेनी अमेजिंग कॉल्स, आई एम लविंग इट लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप एम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर, फिर से बता देता हूँ, 972-235-5555. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो लाइन, यू कैन क्विकली डीएम अस एट प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे भी आप टाइम पास करते हैं वहां पे हम अवेलेबल है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए आपके गाने का नाम, आपके आर्टिस्ट का नाम, और इफ यू आर गिविंग अ शाउट आउट यू कैन डू दैट एंड वी विल गिव यू अ शाउट आउट ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. नेक्स्ट गाना इज ऑफकोर्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट कंप्लीट्स आवर सेगमेंट. ये गाने के बगैर हम हमारा सेगमेंट खत्म कर ही नहीं सकते. दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, तन्हा दिल बाय शान. I just had a lovely conversation with Anjana, who told me that her son Ayansh, who's just 9 years old, loves this song. So Ayansh, I hope you enjoy this song as much as I will. Ladies and gentlemen, as parents, it's our job and duty to make sure that our kids get all the knowledge and expertise. That includes music knowledge as well. So I'm glad all the 80s and the 90s kids, who are no longer kids anymore, they're all adults, they're all parents, they are transitioning the music knowledge to their kids. I'm also doing the same. Anjana is also doing the same. So here we go. Tanha Dil by Shan.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग बाय सुनीता राव एंड ऑफकोर्स फाल्गुनी पाठक ने भी बहुत सारे वर्जन्स किए इस सेम गाने के एंड दे हैव ऑल बीन सुपर डुपर डुपर हिट. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी. आई डू दिस शो एवरी संडे फ्रॉम 8 PM टू 10 PM. लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:30 बजे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बट कहीं जाएगा नहीं क्योंकि 8:30 बजे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक हम खेलते हैं हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज. जी हाँ, एक अमेजिंग स्पॉन्सर है जिसके थ्रू हम एक अमेजिंग गिफ्ट कार्ड दे पाएंगे. वेर यू हैव टू जस्ट आंसर अ क्विक क्वेश्चन, इट विल बी ऑल फन. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स यू गेट अ गिफ्ट कार्ड, बट खेलने में भी बहुत मजा आता है यार, नॉट जस्ट फॉर द गिफ्ट कार्ड बट ऑब्वियसली फॉर द गेम एज वेल. सो मेक श्योर यू ट्यून्ड इन ऑन फनेशिया 104.9 FM. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है मिस्टर खुशाल ने. खुशाल जी का लास्ट नेम रह गया था बिकॉज द वॉइस वॉज क्रैकिंग अ लिटिल बिट, बट खुशाल ने मुझे गाना रेकमेंड किया है. अ बैंड ऑफ बॉयज से लिया गया गाना गोरी. इफ यू गाइज हैवंट हर्ड दिस सॉन्ग तो मैं क्या ही बोलूँ यार. ऑल द मिलेनियल्स आउट देयर, 80s एंड द 90s किड्स आउट देयर नो दिस सॉन्ग वॉज सो स्पेशल बिकॉज दिस सॉन्ग यूज टू गेट प्लेड ऑन MTV, चैनल वी, बी फोर यू म्यूजिक ऑल द टाइम. गोरी, अ बैंड ऑफ बॉयज.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive Media Partner, Panacea.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड

0: डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरोइन हूं।
5: वी नीड टू टॉक।
6: अब क्या हुआ?
5: नथिंग, इट्स नॉट यू।
6: ओह नो,
5: इट्स द डिस्टेंस।
6: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Passion Health Primary Care. Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
7: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
8: Welcome back, ladies and gentlemen. A happy, happy Sunday and a long weekend to you. A happy Labor Day, ladies and gentlemen. और लोग हमेशा यही पूछते हैं कि यार, और सर्च करते हैं कि यार लेबर डे अपना लॉन्ग वीकेंड तो खत्म होने से आया, मतलब इट्स जस्ट वन मोर डे, उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड कब है? वैसे कोलंबस डे है, मेनी पीपल गेट द ऑफ बिकॉज इट्स अ फेडरल हॉलीडे दैट्स हैपनिंग ऑन अक्टूबर 12th, एंड उसके बाद वेटरन्स डे है ऑन नवंबर 11th. तो एवरी मंथ, ladies and gentlemen, we have a long weekend, okay? Thanksgiving bhi aa raha hai November ko, 26th to 29th, and then of course we have the Christmas, December 25th, which is also a federal holiday on a Friday, that is December 25th. So yes, bahut sare long weekends aa rahe hai. So ladies and gentlemen, let's keep rolling, kyunki everybody knows that this is the Sunday Pop Station, where we play all the amazing songs from pop genre. अभी मेरी अभी से बात हुई, सॉरी ये दो बार मैंने अभी बोल दिया, अभी मेरी अभी से बात हुई. ऑलराइट, तो उन्होंने मुझे बताया यार केके का कोई भी गाना बजा दो यार मजा आ जाता है, एंड आई अग्री विथ हिम. केके इज अ लेजेंडरी, वाज अ लेजेंडरी सिंगर, नॉट बिटवीन अस एनीमोर, बट आई जेन्युइनली फील दैट ही स्टिल विथ अस, विथ हिज म्यूजिक, विथ हिज सॉन्ग्स, विथ हिज मेलोडीज, ही विल ऑलवेज बी देयर. तो उनका एक आइकॉनिक गाना बजा देते हैं, यारो, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर फ्रेंडशिप. Here we go, ladies and gentlemen.

Ladies and gentlemen, I don't know if I can describe the feeling that I'm getting when I hear this song. Many of us have grew up listening to KK songs, but this particular song hits hard. This song has been part of our last day at school. This song has been part of our last day at college, at university. It has been the song for the friendship, for the moments that you share beyond that which you share with your families, right? A very, very special song, यारो दोस्ती. थैंक यू सो मच अभी फॉर रिकमेंडिंग दिस सॉन्ग. और अभी की जैसे आपके पास भी कोई अच्छे गाने हो, लेट अस नो यार. वी आर प्लेइंग हियर ऑन द एयरवेज ऑफ ऑन एशिया. वी डू अमेजिंग वर्क ऑफ एयर एज वेल. सो फॉर मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. सो अमेजिंग अमेजिंग मेमोरीज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग. लेट्स कीप हिम कमिंग. 972-235 555 555, 972-235 555. अभी राज ने मुझे कॉल करके बोला, एक बहुत ही अच्छा लाइन उन्होंने मुझे बोला तो मैंने लिख लिया वो. वी केप्ट फॉरगेटिंग योर सॉन्ग्स बट वी ऑलवेज केम बैक एट डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ आर लाइफ्स टू योर म्यूजिक. अ 90s किड्स हु ग्रू अप लिसनिंग टू यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग केके. वॉट एन अमेजिंग लाइन, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑल राइट, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया. अभी नेक्स्ट गाना हमें दीपिका ने रेकमेंड किया है. इट्स आइकॉनिक सॉन्ग बाय KS चित्रा. इट्स कॉल्ड पिया बसंती रे. आई एम बुचरिंग द सॉन्ग, लेट हर सिंग.

such an iconic song. Ladies and gentlemen, keep him coming. 972-235-5555. Abhi hamara pop segment chal raha hai. Devi aur Sajano from 8 to 9. We play songs from the albums and not from the movies. Uske baad tension nahi. 9 se leke 10 baje tak hum bajayenge all the blockbuster songs from our Bollywood genre, जहाँ पे आप सारे गाने हमें रिकमेंड कर सकते हैं. काफी सारे रिक्वेस्ट हमें आए मूवीज के गाने बजाने के लिए, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू होल्ड ऑन टू दैट अंटिल 9 PM. बट आफ्टर दैट वी विल प्ले ऑल द सॉन्ग दैट यू हैव रिकमेंडेड. इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग एंड ऑल अदर डिटेल्स, बिकॉज बहुत टेंशन स्ट्रेस आ जाता है यार जब भी कुछ भी प्लानिंग करना हो. तो एक नाम है मेरे पास, एंड दैट इज Vanessa Events. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग everything together in one place. Venue selection se leke beautiful decor by Signature Events to photography, hospitality, delicious catering, everything exclusively by the renowned Basera Grand. So you can focus on making memories and enjoy the event, right? While they take care of everything else. Call Hari Basera today, 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. नेक्स्ट गाना हमें मनीष भाई ने मेरे को रेकमेंड किया है. ही हेल्स फ्रॉम द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ MP एंड उन्होंने गाना रेकमेंड किया, एक आइकॉनिक गाना, बूम बूम, बाय एन आइकॉनिक सिंगर नाजिया एंड प्रोड्यूस बाय नन अदर देन मिस्टर भिड़ू, जिन्होंने आइकॉनिक सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए फ्रॉम द पॉप सेगमेंट इन द 90s एंड द 80s. हियर वी गो.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन, डैलस वासियों ने तो दिल पे ले लिया यार। मैंने बोला कि यार अच्छे गाने बजाओ, बताइए पॉप सेगमेंट के, लोगों ने बोला ये ले और ये भी ले। बैक टू बैक अमेजिंग सॉन्ग्स आया, स्टार्टिंग फ्रॉम शीतल। शीतल ने रेकमेंड किया है पुरानी जीन्स, एंड आई जेन्युइनली फील दैट देयर इज नोबडी हु इज बोर्न इन द 80s एंड द 90s दैट हैजंट हर्ड दिस सॉन्ग एंड डजंट लव दिस सॉन्ग। इफ यू डोंट लाइक दिस सॉन्ग, I have some trust issues with you, okay? So here's the song, Purani Jeans, जो हर स्कूल और हर कॉलेज के इवेंट में बजता है। Iconic song, and I think it's the anthem of all the farewells. Let's enjoy and have some fun, ladies and gentlemen. और अगर आपको हमारा शो पसंद है, make sure follow करो यार, free है, subscribe करिए, YouTube पे जाइए, Facebook पे जाइए, Instagram पे जाइए, जहाँ पे भी आप time pass करते हैं, हम available है। प्रेम जोशी पॉडकास्ट।

छोटी बस यादें रह जाती है, वो छोटी छोटी बातें याद रह जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। हम ये जबरदस्त शो 8 से लेकर 10 बजे तक करते हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया 104.9 एफएम। तो अगर आप नए लिसनर्स हैं और आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कीजिए आप हमें हर संडे को सुनिए, और ऑफ एयर भी हम बहुत सारा काम करते हैं। मेक श्योर यू फॉलो आवर वर्क ऑन प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट। वी टॉक अबाउट इमिग्रेशन, लॉ, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस टू मेक अ सक्सेसफुल लिविंग इन अमेरिका। वो हम सारे टॉपिक्स टच करते हैं and you will have some fun and you'll also learn something. Next gana mujhe Ashish ne recommend kiya hai, Euphoria ka Mayeri. Here we go.

जाएगी. आइकॉनिक सॉन्ग यार. आई विश दिस सॉन्ग नेवर एंड्स यार, बट ऑफकोर्स वी हैव टू एंड दिस सॉन्ग, क्योंकि दो रिक्वेस्ट और आ चुके हैं बिफोर द कमर्शियल ब्रेक. मेरे को बजाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग ने मुझे बोला है प्रेम भाई गाना बजना चाहिए, उसके पहले सेगमेंट एंड मत करना. मैंने बोला ठीक है. सो पूजा ने रेकमेंड किया है गुड नाल इश्क मिटा ओ ओ.

All right, ladies and gentlemen, last song before we head towards a short commercial break. कहीं जाएगा नहीं क्योंकि उसके बाद दो तीन रिक्वेस्ट ऑलरेडी आर लाइंड अप. नेक्स्ट गाना हमको संजय जोशी ने रेकमेंड किया है. आई स्वेयर टू गॉड, ना मेरा ये कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई लॉन्ग लॉस्ट फैमिली मेंबर है. वी जस्ट हैपन टू हैव द सेम लास्ट नेम. सो ऑल राइट, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी. बट गाना रेकमेंड किया है संजय जोशी ने, लिफ्ट करा दे बाय अदनान सामी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
0: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life.
11: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक। वैसे ये हम शो करते हैं 8 से लेके 10 बजे तक, ओनली ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया 104.9 FM। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। अ वेरी वेरी हैप्पी लेबर्स डे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। यार पहला संडे जहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रेस नहीं हो रहा है मंडे का, वो स्ट्रेस कल रात को शिफ्ट हो जाएगा, बट इट वोंट बी टू मच बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट वर्क वीक अहेड। एंड ऑफकोर्स आर शो का मोटो इज टू गिव यू ऑल द एंथुजियाज्म, ऑल द पॉजिटिव वाइब्स थ्रू आर सॉन्ग्स, थ्रू आर कॉन्वर्सेशंस, टू मेक श्योर योर वर्क वीक स्टेज स्ट्रेस फ्री। अभी आइकॉनिक गाना हमको पिया ने रेकमेंड किया है शो कमर्शियल ब्रेक के पहले, और गाने का नाम है सुनो बाय लकी अली।

All right, ladies and gentlemen, welcome back. Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. You know, they're full of flavor fiesta, from the fresh fiesta veggie to the fiery Pollo Loco, the seafood-packed Sinor Camarón, and the loaded every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizza.com. Abhi mere paas ek zabardast mauka hai aapke paas ek aur रीजन जाने का फन पिज्जा किचन के लिए. एक $10 का गिफ्ट कार्ड है फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आपको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को आंसर देना है. अभी मैंने एक जबरदस्त गाना, आइकॉनिक गाना बजाया फ्रॉम अ सुपर डुपर ट्रूपर हिट मूवी. ओके, ये सेंसेशनल मूवी है. ओके, गाने का नाम था जान से गुजरते हैं. ये गाना किस मूवी का है? बहुत सिंपल सवाल है लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके, I'm going to make it very simple for all of you. Just call me and फटाफट मेरे को मूवी का नाम बता दो and जीत जाओ यार ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम दी फन पिज्जा किचन. 972-235-5555. जान से गुजरते हैं जो अभी आपने गाना सुना, ये कौन सी मूवी का है? मेरे को सिर्फ नाम बता दीजिए मूवी का एंड ले जाइए ये अमेजिंग गिफ्ट कार्ड.

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बैक टू बैक कॉल्स आ गए यार। मेरे को लगा बहुत सारे लोग नहीं है ऑन द रोड, पता चला इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच टू ऑल द कॉलर्स हु आर कॉलिंग अस, क्योंकि यार फोन पे ऐसे रेडियो पे हमारे गाने सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उसमें फोन उठा के बात करना, कॉल लगना, इट्स अ बिग टास्क यार। सो आई अप्रिशिएट यू गाइस, बट ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली समझ लीजिए, हमको एक ही विनर हम घोषित कर सकते हैं। तो मिलिंद चौक हु हेल्स फ्रॉम मुंबई, उन्होंने 10 सेकंड में मेरे को फोन किया और फटफट आंसर दे दिया। यस, द करेक्ट आंसर वॉज धुरंधर, एंड मिलिंद जी जीत चुके हैं। तो जो लोग मुझे मेरे तरफ यू नो हताश हो गए, प्लीज वो सारे फीलिंग्स मिलिंद जी की तरफ कर दीजिए, बिकॉज ही वॉज द वन दैट वॉज दैट वन दिस वीक्स बॉलीवुड क्विज। बट ऑफ कोर्स वी डू दिस एवरी सिंगल वीकेंड, तो हम हर संडे करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू ट्यून इन फन एशिया 8 to 10 PM, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। बहुत मजा आ रहा है देवियों सजनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग। और आधा घंटा है, मैं और 5-6 गाने बजा सकता हूँ बिफोर वी कॉल इट अ नाइट। और मिलिंद जी ने मेरे को एक आइकॉनिक सॉन्ग रेकमेंड किया है, ये गाना मैंने बहुत टाइम से सुना नहीं है, ओके, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैवंट हर्ड दिस सॉन्ग। इट्स सुनिधि चौहान्स, यू नो इट्स अ सीक्रेट सॉन्ग आई जेन्युइनली फील, बट दिस सॉन्ग यूज्ड टू बी ए ब्लॉकबस्टर ऑन चैनल वी एंड MTV, and it's called Era Gera Nathu Gera. Have a listen, ladies and gentlemen.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. I do want to mention about Make Your Ganesha with Phanesia, ka jo hamara program hai. It's brought to you by Passion Health Primary Care, Insure Home Loans, and Omar Khwaja. They are bringing Make Your Ganesha with Phanesia Network. This Ganesh Chaturthi, children age from 5 to 12 can create their own clay Ganesha at a fun-filled workshop on Sunday, the September 12th. Spots are limited, and so register today at ganesha.phanesia.net and let your little artist creativity shine. It's going to be fun. It's going to be amazing. Your children will learn something about our culture, and this will be great because there will be other kids as well who will be doing the same. So make sure you register at ganesha.phanesia.net. Alright, next gana humko Sanjay ne recommend kiya hai. Kya mujhe pyaar hai? आज केके के बहुत सारे गाने के रिकमेंडेशंस आए यार, एंड आई वुडन्ट कंप्लेन बिकॉज आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ द लेजेंडरी आइकॉनिक केके. सो प्रीतम का म्यूजिक, केके की आवाज, क्या मुझे प्यार है. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इस वाली जनरेशन को क्या बताऊँ यार. बैक इन द डे वी कुडंट स्ट्रीम अ सॉन्ग. ये सारे गाने हमारे नोकिया 6600 और हमारे सोनी एरिक्सन फोन्स पे हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एंड इतना मज़ा आता था यार सुनने को, क्योंकि तब तो यूट्यूब और ये सब कुछ था नहीं उतना. एंड वी यूज टू लव लिसनिंग दीज सॉन्ग्स व्हेन वी यूज टू गो टू कॉलेज और वी यूज टू मीट आवर फ्रेंड्स एट ऑफिस और वर्क. सो या वन ऑफ द सॉन्ग्स, क्या मुझे

All right, welcome back, ladies and gentlemen. My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you're planning for a long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solution designed around your goals. Visit mytimeequity.com or call 469-702-1272. बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना मेरे को रेकमेंड किया है राज ने, सफरनामा फ्रॉम तमाशा. इट्स ऑफ कोर्स संग बाय लकी अली एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
2: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
2: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
0: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
5: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia!
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
8: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: two, one, let's go!
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
5: Abey jaldi bol kal subah Panvel nikalna hai
6: Panvel ho ya Dallas safar tabhi mast Jab gaane ho zabardast only on Fun Asia Radio

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
3: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
4: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

Mm-hmm.

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए।
1: सुधी है शहर ला, गमंग गमंग वाला, अपने अपनी मुन्नी को रहते, ये ना उठ रहूँगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: नफरत सी हूं चस्का पै गया पीने दा जल ला के मुलानू चट दे वे ओ काम है यार कमीने दा।
1: दारू सारे पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अशरथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन, शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

Don't touch that dial. Keep listening.

0: How may I help you?
1: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
0: Figure not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कर रहा हूं। एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर रहा हूं। अभी क्या देख, मैं इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, वो डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
1: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।

0: Branica massacre, and crowds gathered in the Serbian capital this morning as Brussels accused some in the country of glorification of a convicted war criminal. The far-right Alternative for Germany has won a decisive victory in Germany's eastern state of Saxony-Anhalt, far ahead of mainstream rivals. German Chancellor Friedrich Merz's Conservative licked their wounds today after a crushing state election defeat in the ex-communist East as the triumphant far-right launched a withering attack against him. The AfD has scored a historic victory in Germany after surging to 44%, stunning Chancellor Friedrich Merz's Conservatives. And Queen Margrethe has been taken to the hospital, where she will remain under observation for the next few days. The former Danish queen, who abdicated the throne 2 years ago in favor of her son, King Frederick, admitted to a hospital in Copenhagen yesterday with a new blood clot in the hip area and dehydration. This means that the 86-year-old will not be able to travel to Oslo on Wednesday to attend the state funeral of King Harald of Norway, as she had planned. Ladies and gentlemen, I have plenty more news, and let's get that to you in the next hour of the program. Stay with us right here on the Fun Asia Network.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: It's Hoko.
4: अरे बस भी करो यार.
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
1: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
14: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है. अरे यार, घर मिल गया.
11: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
11: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and

0: We will round off this first hour of our program here. I do have another very busy hour coming up for you. And that, ladies and gentlemen, is going to be right here on the Fun Asia Network starting at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर.
11: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
17: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
18: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
17: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 consecutive years, 2023 through 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214 1-800-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show on this lovely Monday morning. It's the 7th of September, a short week today because today is Labor Day, a federal holiday here in the United States, celebrated on the first Monday of September today to honor and recognize the American labor movement and the works and contributions of laborers to the development and achievements of the country. So today, a federal holiday in the United States being observed to honor and recognize the American labor movement.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 9728971530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
5: हेलो,
6: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
0: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
5: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s। सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

0: From the movie Mujhse Dosti Karoge, and that track was that answer was first given to us by Anshul Bhargav, and Anshul will get this service of dry vent cleaning from Duct Time as Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. Let me give you Jeetu Patel's number, 972-877-2500, to book your appointment for a cleaner, safer, and fresher home. Professional duct cleaning that helps remove dust, clear clogged vents, and improve airflow, and also reduce hidden fire hazards. Do trust Duct Time.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances.
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
8: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
9: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
10: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
14: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: होचो
4: होको
3: ओचो
4: होको
3: ओचो
4: इट्स होको.
5: अरे बस भी करो यार.
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ.
0: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
7: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा.
0: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलीशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
8: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
9: Of course, an observation of Labor Day today that continues. It is a federal holiday. But let's tell you what else happened on today's date, which is the 7th of September. Elizabeth I was born on today's date in 1533 in Greenwich near London. Queen of England during a period often called the Elizabethan Age, when England asserted itself vigorously as a major European power in politics, commerce and the arts. Queen Elizabeth I was born on today's date. And in 1776, during the Revolutionary War, the American submersible craft Turtle attempts to attach a time bomb to the hull of British Admiral Richard Howe's flagship Eagle in the New York Harbor. And this, ladies and gentlemen, was the first use of a submarine in warfare. Rama I died on today's date in 1809 in Bangkok, the Siamese king and founder of the Chakri dynasty, which reigns in Thailand till today. On the 7th of September in 1813, according to the most cited and congressionally approved account, the U.S. gets its nickname Uncle Sam. The name is linked to Samuel Wilson, a meat packer from Troy in New York, who supplied barrels of beef to the United States Army during the War of 1812. In preparation for his march to the sea, Union General William

0: enjoy your Labor Day, a federal holiday today that is honoring and recognizing the American labor movement and the works and contributions of laborers to the development and achievements in the United States. And I wish you all a very, very happy Labor Day today. It is 10 o'clock in Madhulika.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving. We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
13: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
14: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM. Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का करती हूँ हार्दिक स्वागत। आज मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। आई एम कवरिंग इन फॉर मी टू एंड यस, अ बिग शाउट आउट टू शबनम जी फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग, फुल ऑफ मेलोडीज, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फुल ऑफ अप टू डेट इन्फो। So thank you so much once again, Shabnam ji. Coming back to my show, so yes, today I believe I have, you know, a long list of songs which are all title tracks. So hum agle 2.5 ghante सारे जो फेमस टाइटल ट्रैक्स हैं उन्हें सुनेंगे। सो अगर हैं आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट तो ज़रूर कॉल करिएगा। द नंबर इज़ 9722355555।

That was the title track of गोलमाल. जी हाँ, आज हम सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइटल ट्रैक्स अगले 2.5 घंटे. अच्छा, गोलमाल जो नहीं है वो है एजी फिनटैक्स, क्योंकि वो आपको टैक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप एजी फिनटैक्स को कॉल कर सकते हैं. द नंबर इज 4699429888, और यू कैन विजिट एजी फिनटैक्स.com. That's agfintax.com.

That was a Piku title track, जी हाँ. And before I play the next song, which is a bhajan, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी. Because on the auspicious occasion of Janmashtami, you know, experience the divine spirit of bridge with the melodious voice of Acharya Gaurav Krishna Goswami ji. ये बहुत ही प्यारा सा एक भजन है जो मैं प्ले करने वाली हूँ. जी हाँ, प्रेजेंटिंग चीर जीवे लाल कन्हैया, अ सोलफुल भजन दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द जॉयस सेलिब्रेशन जो नंद भवन में हुई थी जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था. वेयर द बर्थ ऑफ कन्हैया फिल्स ऑल ऑफ ब्रिज विद हैप्पीनेस. प्रेजेंटेड बाय डिवाइन रिकॉर्ड्स एंड व्रजरस प्रोडक्शंस. द ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज्ड ऑन September 4th, 2026, and let's become a part of this divine celebration and enjoy this beautiful, beautiful bhajan.

है ना, ये कितना खूबसूरत सा भजन। एंड यस, अब आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारा दिल चाहता है, दिल कई बार कहता है कि यू नो ये चाहिए वो चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट द हार्ट ऑफन वॉन्ट्स एन एक्सपीरियंस नॉट अ थिंग। यू नो कहते हैं हम ये है कि यार आई वॉन्ट अ वेकेशन, बट वॉट वी रियली आर क्रेविंग फॉर कुड बी फ्रीडम, कुड बी रेस्ट, कुड बी एन एडवेंचर और जस्ट सम क्वालिटी टाइम स्पेंट विथ फैमिली और फ्रेंड्स। दिल चाहता है।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: भूख लगी जोरों की
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम।
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फनेशिया 104.9 FM।

0: दैट वॉज द टाइटल ट्रैक ऑफ ओमकारा. दिस इज मधुलिका. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. वी आर लिसनिंग टू टाइटल ट्रैक्स इन दिस सेगमेंट. अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको पीएमजे ज्वेल्स के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज डैलस आपका इंतजार हुआ खत्म. जी हाँ, पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. अब त्यौहार पे त्यौहार है, फेस्टिविटीज आर ऑल अराउंड, सो एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टमननी, PMJ जो है ये नाम इज ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. सो डू विजिट PMJ ज्वेल्स फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी.
1: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

वेल गणपति बप्पा मोरया जी, हाँ गणेश उत्सव आने वाला है, राइट? सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स एंड ओमार ख्वाजा प्रेजेंट मेक योर गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क। जी हाँ, इस गणेश चतुर्थी बच्चे करीब 5 साल से लेकर 12 साल के, यानी कि एजेस 5 to 12, कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट अ फन फील्ड वर्कशॉप ऑन सैटरडे September 12th। स्पॉट्स आर लिमिटेड, तो आप जल्दी से रजिस्टर कर दें उन्हें एट ganesha.funasia.net एंड लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएटिविटी शाइन। सो यू डू रिमेम्बर टू रजिस्टर देम टुडे एट ganesha.funasia.net एंड लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएटिविटी शाइन।

And from the movie Hero Number One, we are listening to title tracks today. This is Madhulika. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. और टिल 12:30 वी विल बी लिस्टिंग टू सम रियली मेलोडियस टाइटल ट्रैक्स फ्रॉम बॉलीवुड. अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं आपको वनेसा इवेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि हमें कुछ इवेंट प्लान करना है और समझ नहीं आता कि यू नो कहाँ करें, कैसे होगा, कौन सब अरेंज करेगा, फोटोग्राफी कहाँ से होगी, खाना कहाँ से होगा, यू नो सो मेनी थिंग्स वी हैव टू थिंक अबाउट. सो वनेसा इवेंट्स जो है, इफ़ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग या फिर ग्रेजुएशन या फिर हाउस वार्मिंग, राइट, अभी नवरात्रि आ रही हैं सो बहुत से सेलिब्रेशंस होंगे, या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, देन वनेसा इवेंट्स जो है इट ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. बी इट द वेन्यू, बी इट द डेकोर, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फिर फोटोग्राफी. यू नो कई बार होता है कि यार अब आप होस्ट करेंगे कि फ़ोटो खींचेंगे, तो भाई ये सब कुछ, बी इट द वेन्यू, बी इट डेकोर, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड इवन केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. So that's Vanessa Events for you all. You need to call Hari Basera. The number is 469-442-8770. The number once again for Hari Basera is 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. So you just have to, you know, send the invites and then Vanessa Events will handle everything else. So you can just, you know, just, wo kehte na ki, वनेसा इवेंट्स यही बोलेगा मैं हूं ना, चिंता नॉट.

0: Hello, accident claim. Okay, name of the lawyer. Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner.
7: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
0: Visit www.senadainc.com today.
2: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता
9: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
10: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Namita Khemka at 347-449-4242.
11: Phone uthaye, number dabaye 347-449-4242.
12: Sadhiya.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

कुमार सानू भी आ रहे हैं आपके लिए. जी हाँ, डैलस गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90s का नॉस्टैल्जिया. जी हाँ, द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो. जी हाँ, एक्सपीरियंस कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s ऑन सेप्टेम्बर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. Sing along to the songs that you grew up with and experience the magic of an era that still lives in our hearts. Limited seats are available with free parking and exclusive meet and greet options too. Book your tickets today at eventbrite.com and sulekhatickets.com ya fir aap call kare. The number is 214-869-2668 for more information. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group. And now it's time for a giveaway. जी हाँ, आप जीत सकते हैं एक टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट. सिर्फ एक ये आसान से सवाल का जवाब देना है. आपको मुझे बताने हैं कोई भी पांच बॉलीवुड के टाइटल ट्रैक्स, यानी कि पांच बॉलीवुड के ऐसे गाने जिनकी लिरिक्स में मूवी का नाम आता हो. वेरी वेरी इजी इज दैट, राइट? सो स्टूडियो नंबर 9722355555, टेल मी एनी फाइव बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव टाइटल ट्रैक, राइट, विच हैव द टाइटल इन इट्स लिरिक्स. एंड द नेक्स्ट वन, वेल, कुमार सानू की आवाज़ में फ्रॉम आशिकी.

पर ये तो था बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, और अगर मैं कहूँ कि बस एक क्लिनिक चाहिए टू फील गुड फॉर योर वेल बीइंग, देन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट टेक्सास प्राइमरी केयर. जी हाँ, 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. बहुत ख्याल रखा है उन्होंने हमारा, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, ये नाम याद रखिए, दैट्स ल्यूनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, फिर चाहे इन हाउस लैब टेस्टिंग हो, एक्सरेज हो, सिटी स्कैन्स, या इवन कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या हिमालयन मेड्स पाकिस सर्विसेज, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. दैट्स ल्यूनॉक्सी मेडिकल फॉर यू ऑल. एंड द नेक्स्ट वन, वेल, बहुत से गानों की रिक्वेस्ट आई और बहुत से सही जवाब मिले. आकृति, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया कुमार सानू का कॉन्सर्ट का वो टिकट. बहुत से आपने मूवीज़ के रादर गानों के नाम बताए जिनमें टाइटल ट्रैक है, एंड द वन आई एम प्लेइंग इज़ फ्रॉम द मूवी पठान.

Well, that was the title track, दिल धड़कने दो. और जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं सारे टाइटल ट्रैक्स. तो अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं कहूँगी कि अगर दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा अच्छा खाना है और खुद नहीं बनाना है, देन यू शुड गो टू पेज 383, क्योंकि यहाँ आपको सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, ये सब कुछ मिलेगा. एंड अगर अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है पेज 383 एट हब 121, then you're seriously missing out. जी हाँ, this is where bold Indian street food meets modern flair. तो मतलब चाट खाएं, पकौड़े खाएं, खाना खाएं, be it brunch, be it lunch, be it dinner or a date night, या तो एक you know एक foodie का meetup या फिर just एक चाय session. Page 3 brings the perfect mix of flavor, energy and vibrant vibes. So visit page 383. This is going to be at Hub 121 and explore more at page3eatery.com. That's page3eatery.com.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
8: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
9: डील कहाँ?
8: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
9: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो।
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
18: अजी सुनते हो?
19: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
1: Tracks that put you on the right track.

Well, that was the title track from Dil To Pagal Hai, and this is Madhulika, and मैं दूंगी आपका साथ एक घंटे और यानी कि 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. लेकर आई हूँ आज बहुत सी टाइटल ट्रैक्स आपके लिए. अगर कोई खास टाइटल ट्रैक सुनने का मन है, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन फॉर यू इज 9722355555.

That was, of course, the title track from Partner. And yes, I am going to be your partner till 12:30. जी हाँ, मैं दूंगी आपका साथ 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सुन रहे हैं हम आज कुछ टाइटल ट्रैक्स ऑफ बॉलीवुड.

0: और जब सोनू निगम आपके लिए लाइव गाना गाएंगे तो कुछ कुछ होता है तो बनता है, राइट? कुछ कुछ तो डेफिनेटली होगा. जी हाँ, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. सैटरडे सितंबर 26 को होगा शाम 8:30 बजे से एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल गोना बी लाइव. टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल करें 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर, फन एशिया नेटवर्क.
1: साथिया, मधम मधम तेरी.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
9: लैपटॉप में.
8: इन्वेस्टमेंट,
9: गूगल ड्राइव,
8: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स.
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
8: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
10: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
10: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
19: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
20: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
21: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
0: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

That was Jhoom Barabar Jhoom, the title track. Interestingly, इस movie में दो title tracks थे. You know, एक was shot on Amitabh Bachchan and the other one was between Bobby Deol and Abhishek Bachchan, Lala Dutta and Preeti Zinta. But I like the Amitabh Bachchan one more. अच्छा, title tracks की बात ही कुछ होती है. Sometimes these title tracks become bigger than the movie itself. You know, सालों बाद people may forget the storyline, but they instantly remember the title song. यू नो, रोमांटिक मूवीज़ के जो लव टाइटल ट्रैक्स होते हैं, जैसे कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, हम तुम, या फिर यू नो, ए दिल है मुश्किल.

है ना, ये कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा ये टाइटल ट्रैक. वेल इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलोंग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. मैं मिलूंगी आपको, जी हाँ, मेरा और आपका साथ होता है वैसे सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून इन जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: Ye tara wo tara har tara.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट एस्ट्रोलॉजर ईश्वर .com.
5: We need to talk.
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
8: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, rich north indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
9: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
4: Family dinner ho ya friends ke sath celebration, make every meal grand at basera grand. Basera grand, come hungry, leave happy together.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Beta, 95% आए?
6: हाँ मम्मी.
5: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
7: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
7: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
14: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस लेबर डे एडिशन ऑफ दिल से ऑन 104.9 एफएम. आई एम हियर एज अ सब्स्टिट्यूट बिटवीन 12:30 एंड 2:30 पीएम. इट इज 4 मिनट्स पास्ट 1 ऑन द सितंबर 7th. आई होप यू आर एंजॉयिंग अ नाइस डे ऑफ विथ योर फैमिली. मौसम के बारे में क्या कहें, अच्छी खासी गर्मी है एंड यू एक्सपेक्टेड दैट राइट. यू नो इट्स हॉट. इट इज करंटली 95 डिग्रीज हियर इन द मिकिनी एरिया. टुडे इज हाई 98 एंड अ लो ऑफ 78 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. एंड दिस वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय तारा कमर्शियल एनर्जी. आई नो जब मौसम गर्म होता है एसी ज़्यादा यूज किया जाता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, लेकिन If you have a reliable and trustworthy company like Tara Commercial Energy, they will give you the competitive rates that will let you sleep and rest at ease because they've been serving Texas businesses since 2002. You too can get the best rates, best service through Tara Commercial Energy. Aap call kijiye 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. All right, ladies and gentlemen, is waqt aapko entertain kar rahe hain hum with awesome 80s. I've got a very nice selection of songs that I'll be playing for you. I hope ki hamari selection aapko bhi pasand aayegi.

मनहर उदास और कंचन की आवाज़ में सुन रहे थे आप कुर्बानी फिल्म से लिया गया ये हिट गाना, जो कि विनोद खन्ना और जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था। यू आर लिसनिंग टू ऑसम 80s, जिसमें हम बहुत ही सिलेक्टेड 80s के गाने आपको सुनवाएंगे टिल 1:30, सो दैट्स अनदर 15 minutes. Today is the 7th of September, and guess what's happening on Saturday, September 12th? Well, it's a very special day where Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans, and Omar Khwaja bring to you Make Your Own Ganesha with Fun Asia Network. Ji haan. All the little ones, kids ages 5 to 12, get to create their own Clay Ganesha at a fun-filled workshop Saturday, September 12th. Now, spots are limited, yani ke pure shehar ke bachche to nahi isme participate kar payenge. So if you want to register your kids, you need to visit ganesha.funasia.net and let your little artist creativity shine. We're going to go ahead and continue Awesome 80s.

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना जो फिल्म नसीब का टाइटल ट्रैक था। इससे पहले जो गाना हमने आपको सुनवाया किशोर और आशा जी की आवाज में फिल्म दोस्ताना से लिया गया था, और अब जहां दोस्ताना का गाना हो गया याराना का टाइटल ट्रैक भी सुन लेते हैं।

अमिताभ बच्चन और अमजद खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना. आप सुन रहे थे टेकन फ्रॉम द फिल्म याराना द टाइटल ट्रैक. 21 मिनट्स पास्ट वन. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग दिस लवली मंडे लेबर डे एंड योर डे ऑफ. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय सीमा मेहता लॉ ऑफिसेस. नाउ इफ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट residency, the law offices of Seema Mehta can help you. Attorney Seema Mehta ke paas bahut sara experience hai, especially when it comes to immigration, including EB-5 investor visa, family and employment visa, perm labor certification and US citizenship. So if you need to get more information, aap unhe email kar sakte hai, info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. That's the law offices of Seema Mehta. You're listening to Awesome 80s on 104.9 FM.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Documents ya parcel bhejni hai?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for

शुभ अवसर पर कम एक्सपीरियंस द डिवाइन स्पिरिट ऑफ ब्रज विद द मेलोडियस वॉइस ऑफ आचार्य गौरव कृष्णा गोस्वामी जी, जिनकी आवाज अभी आपने सुनी, चिरजीव लाल कन्हैया. अ सोलफुल भजन दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू जॉयस सेलिब्रेशन एट नंद भवन वेयर द बर्थ ऑफ कन्हैया फिल्स ऑल ऑफ ब्रज विद हैप्पीनेस. Presented by Divine Records and Vrajans Productions, the official music video released on September 4th. So you too can now become part of this divine celebration. All right, ladies and gentlemen, शुरू करते हैं अपना next segment. मैंने सोचा कुछ interesting करना चाहिए. जैसे मैं खुद को कहती हूँ आपकी host, आपकी दोस्त, आपकी अपनी हुई, right? तो अब अगले एक घंटे हम आपको ऐसे गाने सुनवाएंगे जिसमें वन और द अदर कैरेक्टर्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू द अदर इन रियल लाइफ. आप जब ये गाना सुनेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ.

अपने तो अपने होते हैं, सुन रहे थे आप सोनू निगम की आवाज में ये टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म अपने। जी अगले एक घंटे वेल एक्चुअली जस्ट 45 मिनट्स टिल 2:30 आई विल बी प्लेइंग सॉन्ग्स जिसमें जो एक्टर्स हैं कोई ना कोई किसी से एक्चुअली रिलेटेड है, जैसे कि इस अगले गाने में आप देखेंगे। वेल एक्चुअली सिंस यू लिसनिंग आप सुनेंगे। इन द प्रीवियस सॉन्ग दैट वाज धर्मेंद्र विद हिज टू सन्स बॉबी देओल एंड सनी देओल, और इस गाने में अमिताभ बच्चन विद हिज वाइफ जया जी।

सुन रहे हैं आप आज हमारा स्पेशल सेगमेंट तेरा मेरा की रिश्ता, जिसमें हम आपको ऐसे फिल्मी गाने सुनवा रहे हैं जिनमें कैरेक्टर्स एक्चुअली एक दूसरे से रिश्ते में बने बंधे हुए हैं, यानी कि दे आर एक्चुअली रिलेटेड. आई होप यू आर एंजॉयिंग. इफ यू हैव गॉट अ सजेशन फॉर अ सॉन्ग वेयर यू नो दैट द एक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे, चाहे वो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या बहन भाई का या बाप बेटे का, इफ यू गॉट अ सजेशन फील फ्री टू कॉल 9722355555. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात.

विशाल दादलानी की आवाज़ में कुर्बान फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, जिसमें थे सैफ अली खान और उसके साथ थी उनकी रियल लाइफ वाइफ यानी कि करीना कपूर खान। आज के इस सेगमेंट में तेरा मेरा की रिश्ता में हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जिसमें फिल्म के में जो एक्टर्स हैं वो एक्चुअली एक दूसरे से असली रिश्ते में बंधे हुए हैं, जैसे कि आप इस अगले गाने में नोट करेंगे। ये सुनते हैं ना। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सेगमेंट ऑन 104.9 FM, फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं ही तो।
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
13: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड वी आर डूइंग दिस स्पेशल सेगमेंट कॉल तेरा मेरा की रिश्ता अपने तो अपने होते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जिनमें एक्टर्स एक दूसरे के साथ रियलिटी में भी रिलेटेड हैं। अब अगला गाना जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, इसमें भी एक्टर्स एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आपने बताना है कि उनके बीच में क्या रिश्ता है या मैं किसकी बात कर रही हूँ। और सही जवाब देने पर आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन फ्रिस्को की तरफ से $10 का gift card, yani ki store credit. So if you love the great tasting pizzas at Fun Pizza Kitchen, well, you don't want to miss this chance to win $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. So gaur se dhyan se suniye ye agla gana taken from the film Shandar aur mujhe bataiye ki yahan kaun kiska rishtedar hai. 972-235-5555 hai हमारे स्टूडियो का नंबर. दैट इज 972-235-5555.

तेरा मेरा की रिश्ता अपने तो अपने होते हैं सेगमेंट सुन रहे हैं आप, जिसमें हम ऐसे गाने आपको सुनवा रहे हैं जिसमें एक्टर्स एक दूसरे से एक्चुअल रियलिटी में रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब वो रिश्ता क्या है, आई एम श्योर यू कैन फिगर इट आउट व्हेन यू हियर द सॉन्ग।

और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अनिल कपूर और श्रीदेवी एक दूसरे के ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ है। हाउएवर, मेरे इस सवाल के साथ कोई गिव अवे कनेक्टेड नहीं था। द गिव अवे वॉज विथ द प्रीवियस क्वेश्चन, वो जो शानदार फिल्म का गाना हमने प्ले किया था जिसमें शाहिद कपूर की बहन थी उनके साथ, एंड ऑफ कोर्स दैट गिव अवे डिड गेट कंप्लीटेड। तेरा मेरा की रिश्ता, अपने तो अपने होते हैं हमारे आज के सेगमेंट का नाम है, जिसमें हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जिसमें एक्टर्स एक दूसरे के सगे रिश्तेदार हैं। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। इट्स पॉसिबल कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या जिस डॉक्टर को मिलना चाहते हैं आप दे आर आउट ऑफ नेटवर्क। एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर वर नथिंग टू वरी अबाउट। दे ऑफर एन $85 अ मंथ प्लान। अच्छा, अब ये प्लान आपको क्या देगा? प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ जहां भी जरूरत हो, केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% ऑफ सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स एज वेल एज इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ये इंश्योरेंस प्लान नहीं है बट जस्ट वन ऑफ देयर इंटरनल बेनिफिट प्लान दैट यू कैन अवेल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस प्लान के बारे में आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ physicians.com। आइए अब इस सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अगले गाने की तरफ। और यहां पर भी दोनों एक्टर्स एक दूसरे के बहुत बल्कि बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आइए सुनते हैं ये गाना। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से।

0: गुरु फिल्म से लिया गया ये गाना हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन पर पिक्चराइज किया गया था. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशर रेडियो. आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रैप अप द शो बट बिफोर आई गो आई वांटेड टू रिमाइंड यू आपने सोनू निगम कॉन्सर्ट के टिकट्स लेने हैं. इट्स नॉट एवरी डे दैट ही इज हियर परफॉर्मिंग लाइव सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट ही हैज एवर संग. सोनू निगम रेवोल्यूशन कॉन्सर्ट हो रही है सैटरडे सितंबर 26 को एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. सो गो अहेड गेट योर टिकट्स ticketmaster.com पर आपको टिकट्स मिल जाएंगे या फिर आप कॉल कीजिए 855-360-SHOWS एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. एंड लेट्स गो अहेड एंड रैप अप दिस सेगमेंट विद वन फाइनल सॉन्ग.
1: सदा बाहर

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
8: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून रश टाइम विद सुनहरी किरण. और जी आज है मंडे. सबसे पहले तो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर और यू आर गोइंग समवेयर और स्टिल इन राउट, विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड सेफ ट्रैवल. खैरियत से वापस आइए. और आई होप कि आपने अपने इन दो दिनों को एंजॉय किया होगा. आज है तीसरा दिन लॉन्ग वीकेंड का. एंजॉय इट एंड वाइल इट लास्ट, क्योंकि छुट्टियां जल्दी से खत्म हो जाती हैं और दोबारा से फिर आम जिंदगी जो हमारी है वो हो जाती है शुरू. लेकिन आपकी हर रोजमर्रा की जिंदगी में 2:30 से 5 बजे तक मैं शामिल रहती हूँ राइट हेयर ऑन 104.9 एफएम. मैं हूँ किरण और लेकर आती हूँ आपके लिए हर रोज एक नया फ्लेवर. आज का फ्लेवर, यू नो, मंडेज आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू. आपकी पसंद, आपकी फरमाइश, आपकी पसंद के गाने, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, आपकी मनपसंद आरजे के साथ. कीप दोज कॉल्स 972-235-5555.

जी हाँ, सुन रहे थे आप पुकार फिल्म से ये गाना। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित हमें इस मूवी में नजर आई जी। अच्छा, आगे बढ़ रही हैं, आपकी पसंद के गाने प्ले कर रही हूँ। दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा मुझे ये गाना लगता है, टेकन फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, आई थिंक वही है इस मूवी का नाम। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता, क्योंकि कई हमारे पास इंश्योरेंसेस होती हैं जिनमें कुछ जगहें नेटवर्क में नहीं आती, तो फिर आपको क्या करना है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही आसान सोल्यूशन, और वो है दे आर इंट्रोड्यूसिंग पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जी कि इस मेंबरशिप में इंक्लूड होता है प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसी के साथ टेली हेल्थ whenever it is required, care coordination hoti hai, plus 20% savings aapko milengi on eligible self-pay labs, imaging as well as diagnostic services. To ye ek health insurance plan nahi hai, kuch restrictions is pe zarur apply hoti hain, aur ye tamam mazid details janne ke liye, why don't you give them a call and check out if they are the right place for you to go. And I think it is brilliant for $85 a month, ye sab kuch aapko mil raha hai. That number is 214-666-6251.

डिटेल्स जानने के लिए व्हाई डोंट यू गिव देम अ कॉल एंड चेक आउट इफ दे आर द राइट प्लेस फॉर यू टू गो. एंड आई थिंक इट इज ब्रिलियंट फॉर $85 अ मंथ. ये सब कुछ आपको मिल रहा है. दैट नंबर इज 214-666-6259. 214-666-6259 उनका नंबर, या फिर passionhealthphysicians.com इज द वेबसाइट.

अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. सो आप अपना ख्याल रखिए और आप अटर्नी को हायर कीजिए जो आपके लिए ये तमाम बाकी चीज़ों का ख्याल रखें. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल अटर्नी उमर एंड हिज टीम हेल्प यू फाइट योर केस, दे विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और बेहतरीन बात यह है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. तो इस विन विन सिचुएशन को अवेल करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए कॉल कीजिए अटर्नी उमर को. दैट नंबर इज 4693005046 is the number. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए which is attorneyomar.com. अच्छा जी, इसी के साथ फिल्मी फरमाइश चल रहा है. मंडेज का दिन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू बिकॉज यू आर सच वंडरफुल लिसनर्स. और अगला गाना इज गोइंग आउट स्पेशली टू सुहेल एंड मरियम. दिस इज फॉर यू गाइज.

और इसी के साथ अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो वी ऑल नो दैट सच सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, डीलिंग विद द पेपर वर्क, इंश्योरेंस कंपनी, लीगैलिटीज और इतनी सारी निटिग्रिटीज होती हैं सिचुएशन की. तो और साथ ही साथ आपको अपनी वेल बींग

एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर इन टेक्सस तो डेफिनेटली अगर आप स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जो कि सभी ढूंढते हैं तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज द प्लेस यू नीड टू नॉक. प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 कंपेरेटिव रेट्स आपको ऑफर करते हैं जी और रिलायबल सर्विस है उनकी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कस्टमाइज करते हैं एनर्जी प्लान्स को खास आपके लिए. तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो तारा कमर्शियल एनर्जी को कॉन्टैक्ट कीजिए. दैट नंबर इज 844-428-2808. नंबर एक बार फिर आपके लिए बता रही हूँ 844-428-2808. इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर taraenergy.com को चेकआउट कीजिए. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको taraenergy.com पे मिल जाएगी. इसी के साथ गानों का सिलसिला, आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी है. इस गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. दिस सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
2: वन मिस्टेक डजंट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर। अ DWI और DUI चार्ज कैन ब्रिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इंक्लूडिंग लाइसेंस सस्पेंशन, फाइंस एंड इवन जेल टाइम, बट यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन। एट माथुर लॉ ऑफिसर्स PC, वी प्रोवाइड एक्सपीरियंस्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन क्रिमिनल डिफेंस मैटर्स, इंक्लूडिंग DWI केसेस।
3: वी ऑल्सो असिस्ट विद रिलेटेड लीगल इश्यूज, इंक्लूडिंग इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस। एवरी केस इज डिफरेंट, द राइट लीगल स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक फैक्ट्स and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: एक और लड्डू ले लो।
6: थोड़ी और बिरयानी?
5: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
7: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में मैं किरण आपके साथ 2:30 till 5 PM every day Monday through Friday. और आज है जी मंडे, आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं, लेकिन अभी लेके आई हूँ आपके लिए एक खास गिव अवे. गिव अवे आया है फन पिज्जा किचन की तरफ से. दिस इज अ $10 गिफ्ट कार्ड दैट यू कैन विन. इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस गिफ्ट कार्ड को जीत जाते हैं तो आपको फ्रिस्को की लोकेशन पे आना पड़ेगा फन पिज्जा किचन की और अवेल करना होगा अपना ये गिफ्ट कार्ड. तो आप जब आपने फन पिज्जा किचन की फ्रिस्को लोकेशन पे आना ही है तो फिर मुझे कॉल करके बताइए कि फ्रिस्को लोकेशन का एड्रेस क्या है. फन पिज्जा किचन की दो लोकेशंस हैं आपके लिए, लेकिन यू हैव टू कॉल मी एंड टेल मी द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन टू विन दिस गिफ्ट कार्ड. वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि फन पिज्जा किचन के पिज्जाज तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, स्पेशली हमारे देसी फ्लेवर्स के लिए. इट इज एब्सोल्युटली डिलिशियस. लेकिन अब फन पिज्जा किचन ने एक नया मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप शुरू किया है, विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हर तरह का आपको मेक्सिकन फ्लेवर वहां पे मिलेगा. उनके पिज्जाज में इंस्पायर्ड हुए हुए हैं उनके पिज्जा उन फ्लेवर्स से. चेकआउट कीजिए, जरूर जाइए, देखिए कि व्हाट इज द हाइप अबाउट एंड व्हाट कैन यू ईट. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. गिव मी अ कॉल एंड टेल मी द फुल एड्रेस ऑफ फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन.

फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड आया था आपके लिए. यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को टू पिक अप योर कार्ड इफ यू आर द विनर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स, शिवानी, निखिल, सुंदर, मिहिर, मनीष, थैंक यू. एंड आप तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इट रियली मैटर्स अ लॉट. और जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा जो भी विनर होते हैं, जो आप लोग कॉल करते हैं, जिस सीक्वेंस में कॉल करते हैं, उसको एक नंबर असाइन होता है और उसके बाद आपके नाम को एक आपके नंबर को एक मैथ के फॉर्मूले में डाल के विनर निकाला जाता है जी. तो आपकी लकी डिसाइड करती है, मैं विनर नहीं चूज करती. और आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 3, विच इज सुंदर. सुंदर, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे, $10 का फन पिज्जा किचन का गिफ्ट कार्ड. आपको फ्रिस्को लोकेशन से जाके उठाना होगा. लोकेशन का मैंने आपसे सही एड्रेस पूछा था और मैं आप सबको सही एड्रेस खुद भी बता देती हूँ. दैट इज 15900 स्टेट हाईवे 121 स्वीट 100 फ्रिस्को टेक्सस 75035. थैंक यू वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे गिव अवेज हैं थ्रू आउट द शो, तो बने रहिए मेरे साथ. आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर गिव अवे इन अबाउट 15-20 मिनट्स. और आप सबकी पार्टिसिपेशन इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. थैंक यू सो मच.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Offer karte hain ji, they're offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, as well as business advisory services. Chahe aap individual ho, business owner ho, aapka apna startup ho, anything, AG Fintax is here to guide and help you. Give them a call if you have any questions. That number is 469-942-9888. 469-942-9888. Is the number, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, which is agfintax.com. और अगला गाना रिक्वेस्ट किया है चित्रा जी ने, उन्हीं की रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले कर रही हूं. लेकिन उससे पहले आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूं, और वो ये कि करण जौहर ने फाइनली स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 तो कुछ पहले ही अनाउंस कर दी थी, लेकिन शनाया को उन्होंने इसमें कास्ट कर लिया है. शनाया कपूर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में कास्ट होंगी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के बारे में कुछ मजीद बात आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से, और इससे पहले शनाया को क्या प्रॉमिस किया गया था करण की तरफ से, और कुछ वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, और किन मूवीज में शनाया आई. मुझे तो पता भी नहीं लगा कि ये मूवी उनकी आके रिलीज होके चली भी गई. बट बहरहाल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 इज अ बिग न्यूज. बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो प्ले अ सॉन्ग फॉर यू आफ्टर दिस. बट बिफोर दैट दिस इज गोइंग आउट टू चित्रा जी.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. आपकी पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पर जारी हैं जी. अराउंड 4:15-4:30 तक आपकी फरमाइशें लूंगी और 4:30 के बाद हमारे साथ कनेक्टेड होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसर्स और ही इज एन अटर्नी हुज गोना टेक योर क्वेश्चंस लाइव. आप अपने लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं. कोई भी सवाल है आपका तो यू कैन गिव अस अ कॉल 9722355555. बस वी स्टिल हैव अबाउट 40 मिनट्स इनफैक्ट 50 मिनट्स बिफोर दैट. और अब मैं और गिव अवे आपके लिए लेके आई हूं एज प्रॉमिस्ड. और इसके बाद एक और भी है मेरे पास तो फोन कॉल्स आप करते रहिए. यू माइट जस्ट बी द लकी विनर एट वन ऑफ दीज गिव अवेज. ये जो है ये चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया है. $10 ऑफ आप हासिल कर सकते हैं ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चंडीगढ़ बाइट्स पे आपको अमेजिंग खाना मिलता है और स्पेशली जो उनका लंच स्पेशल है वो एक स्पेशल थाली लंच में देते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे जिसमें एक्साइटिंग डिशेस रोटेट करती हैं जी. तो कोई एक डिश नहीं होती बल्कि हर रोज डिशेस रोटेट करती हैं. कुछ यूनिक कुछ नया आपको उनके लंच स्पेशल में खाने को मिलता है ऑन दिस थाली स्पेशल या स्पेशल थाली जो लगती है. सो जरूर विजिट कीजिए. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन या फिर उनकी वेबसाइट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. chandigarhbites.com इज वेयर यू कैन लॉग ऑन एंड फाइंड आउट मोर डिटेल्स. और अब जो गिव अवे आपके लिए आया है, अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसे लिया गया है फिल्म देवदास से जिसमें हमें नजर आई ऐश्वर्या राय और साथ ही साथ शाहरुख खान इस गाने में. आपको मुझे कॉल करके ये बताना है देवदास फिल्म के जो मोस्टली गाने थे एक दो गानों को छोड़कर मोस्टली गाने इस फिल्म के किस म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए थे. म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताइए और जीत लीजिए ये $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. मूवी नेम इज देवदास. देवदास के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आपसे जानना चाहती हूं.

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था और

जी हाँ जी, इस गाने पे जाते हुए जो कि देवदास से आपके लिए प्ले किया था, सवाल बहुत सिंपल पूछा था कि इस मूवी के मुझे म्यूजिक कंपोजर का नाम बता दीजिए, क्योंकि अब तो खैर मुझे इस्माइल दरबार साहब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते. करेक्ट आंसर इज इस्माइल दरबार. लेकिन जब वो आ रहे थे और ये उनकी सेकेंड मूवी थी जो उन्होंने की थी संजय लीला भंसाली के साथ, इससे पहले वो हम दिल दे चुके सनम उनके साथ कर चुके थे, और दोनों ही फिल्मों में उन्होंने क्या कमाल की हमें परफॉर्मेंसेज, मतलब गाने दिए, और ऐसे एवरग्रीन गाने जिन्हें कभी ना भूला जा सकता है और हर बार उनको सुना जाए तो एक नया इंप्रेशन उन गानों का पड़ता है और ऐसा लगता है कि बस अभी ही कंपोज किए गए हैं. सो आई डू विश एंड होप कि इस्माइल दरबार साहब का कुछ ऐसा ही काम मजीद और देखने को मिले. आप सबकी फोन कॉल्स का और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, इस्माइल दरबार इज द नेम. एंड जैसे आप जानते हैं योर द नंबर एट विच यू कॉल, जो सीक्वेंस होता है आपका, उसको मैं एक मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ और

करेक्ट विनर होता है. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं कॉलर नंबर 5 एंड दैट इज ताहिर अली. ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट, $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर एट चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. तो आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. अभी एक और गिव अवे मेरे पास है आपके लिए, बने रहिए और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपने गिव अवे आपको नहीं मिला. आपकी पार्टिसिपेशन इज व्हाट रियली रियली मैटर्स टू मी एंड दिल से उसका बहुत बहुत शुक्रिया.

अच्छा जी, और अगर आप क्रेव कर रहे हैं कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, तो देन होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड, इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को. एंजॉय कीजिए उनकी आइकॉनिक फेवरेट्स जैसे कि चना पूरी या फिर सैंडविचेस और डिलिशियस करीज, और साथ ही साथ उनका लेजेंडरी होको कोल्ड कोको. दे आर लोकेटेड एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को. और आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप मेन्यू देखिए, जाने से पहले देखिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या खाना है वहां जाके. दैट वेबसाइट इज hoco.us, विच इज hoco.us. और उनका जो मंत्र है वो बहुत सिंपल है, कम हंग्री एंड लीव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया. और आपके लिए अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट होको की तरफ से, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी है, तो सुन लीजिए जी, 20% ऑफ मिलेगा, स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको विद अ वैलिड स्टूडेंट आईडी ऑन योर बिल्स. और अगर आप एम्प्लॉई हैं कहीं के, कहीं किसी जगह के वैलिड एम्प्लॉई आईडी है आपके पास, तो 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको लंच पैक्स पे, अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. तो ये जबरदस्त डील होको की तरफ से आपके लिए आई है. जाइए और देखिए आप कैसे होको को एंजॉय करना चाहते हैं. और ये जो अगला गाना मैं आपके प्ले करने लगी हूं, ये लिया गया है फिल्म स्वदेश से. शाहरुख खान वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दिस मूवी. आई रिमेंबर कि जब शाहरुख और गायत्री की जोड़ी बड़ी, मैंने गायत्री को दोबारा कभी फिल्मों में बहुत कम देखा या शायद कभी भी नहीं देखा, बट आई थॉट कि स्वदेश में शी वाज रॉकिंग एंड शी लुक्ड सो गुड विद शाहरुख खान. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, स्वदेश.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: Dad, property papers kahan hai?
10: Laptop mein.
9: Investment?
10: Google Drive.
9: Insurance? Passwords?
10: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
9: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: Documents या parcel भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर relocate करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी transport करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
14: Documents shipping, boxes shipping, complete door to door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: हेलो,
16: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
15: Fikar not. We have the perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम.
17: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
18: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
17: कैसे?
18: पेज 3 ईटरी?
17: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
18: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
17: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
19: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
20: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
19: नहीं.
20: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
19: नहीं.
20: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
19: वो भी नहीं.
20: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
13: AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
21: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
22: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
23: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
24: डील कहाँ?
23: सिंपल Paisya पे. इंट्रोड्यूसिंग Paisya. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन Paisya, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
21: डाउनलोड Paisya, दैट्स PaaSya टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं पास है.
25: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
26: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

और इसी के साथ एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. और आज हो गई है जी 7th of September. मैं हूँ किरण, सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण 104.9 FM पे. 7 सितंबर हो चुकी है, 11 सितंबर को आ रहे हैं दी लेजेंडरी द मेलोडी मेलोडियस अनफॉरगेटेबल आवाज जिसने 90s को दिया एक अलग ही रूप, एंड दैट इज कुमार सानू. जी हाँ, कुमार सानू आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन September 11th द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. आइए और इस इवेंट का हिस्सा बनिए. लाइव कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s ही नाम रखा गया है. जैसे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ना वो 90s का बॉलीवुड, ये कुछ ऐसी ही दास्तान होने वाली है. यहाँ पे कुमार सानू साहब के तमाम खूबसूरत गाने आपको सुनने को मिलेंगे. अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं खरीदे तो अभी भी मौका है आपके पास. eventbrite.com पे लॉग ऑन कीजिए या फिर sulekhatickets.com पे लॉग ऑन कीजिए. दोनों में से कोई एक वेबसाइट आप लॉग ऑन कर सकते हैं, टिकट्स खरीद सकते हैं. कोई और सवाल है आपका, मजीद आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देन दैट नंबर इज 214-869-2668. नंबर अगेन इज 214-869-2668. और ये भी बताऊं आपको जी कि फ्री पार्किंग है इस इवेंट की और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं व्हेन यू आर बाइंग द टिकट. डू चेक आउट दैट. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. और अब आपके लिए ये एक टिकट में लेके आई हूँ कुमार सानू साहब के इस कॉन्सर्ट का, जो कि बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए. फौरन से फोन उठा के पार्टिसिपेशन शुरू कीजिए. मुझे आपने कॉल कर ये बताना है कि कुमार सानू ने अपने करियर में कितनी दफा फिल्म फेयर अवार्ड जीता. बहुत ही सिंपल, नॉमिनेशंस तो बेतहाशा पाई, लेकिन कितनी दफा उन नॉमिनेशन से अवार्ड मिला भी उन्हें. हाउ मेनी टाइम्स डिड ही विन द फिल्म फेयर अवार्ड इन हिज करियर. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे आप ये शानदार गाना। जतिन ललित का म्यूजिक, समीर साहब के लिरिक्स, कुछ कुछ होता है से लिया गया। और आपसे सवाल पूछा था कि अगर आपने ये टिकट जीतना है कुमार सानू के कॉन्सर्ट का, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि कितने अवार्ड्स उन्होंने अपने करियर में फिल्म फेयर में जीते। नॉमिनेशन तो बहुत सारी पाई पर जीते कुल 5 अवार्ड्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कौन कौन से थे। 1991 में उन्होंने जीता फिल्म आशिकी के लिए अब तेरे जी लेंगे हम, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर। उसके बाद 1992 में साजन फिल्म के लिए उन्होंने जीता मेरा दिल भी कितना पागल है गाने के लिए। दीवाना फिल्म के लिए सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं 1993 में कुमार सानू ने जीता। उसके बाद 1994 में कुमार सानू ने जीता फ्रॉम बाजीगर ये काली काली आंखें, और 95 में जीता 1942 अ लव स्टोरी की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा है। मतलब अगर आप देखिए तो 91 92 93 94 95 5 साल लगातार उन्होंने बॉलीवुड की वो जो कहती है ना आवाज की दुनिया पे किया राज। और आप सब ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अराउंड 12 से 13 कॉल्स मुझे आई हैं जी, और इस तरह की सिचुएशन में आपकी लक ही आपका विन डिसाइड करती है। मैं लकी विनर नहीं चुनती। आपका नंबर जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो एक मैथ के फॉर्मूले में डाला जाता है, और उसके बाद उससे मैं विनर निकालती हूँ, ताकि आपकी लक फैसला करे, नॉट मी। और आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 6, एंड दैट इज मोहम्मद उस्मानी। उस्मानी साहब, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। आपका नाम और नंबर हमने नोट कर लिया है, प्लीज लुक आउट और फॉर द इंफॉर्मेशन दैट यू विल रिसीव वेरी सून बिफोर द कॉन्सर्ट। एंड आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है, मैं क्या करूं जी, मेरा बस चले तो मैं आप सबको अवार्ड दे दूं या जो गिव अवे होता है वो दे दूं, लेकिन इट हैज टू बी वन विनर, एंड टुडेज डे वॉज उस्मानी साहब। टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।

और अगर आप कहीं मूव करने का सोच रहे हैं तो पहले तो मैं कहूंगी क्यों जा रहे हैं डालस को छोड़ के, लेकिन कोई मूविंग है या आपने कहीं शिप, आपने डॉक्यूमेंट्स शिप करने हैं या फिर बॉक्सेस शिप करने हैं या फिर आपको पूरा घर मूव करना है या गाड़ी कहीं से मूव करवानी है या कहीं करनी है, तो फिर SFL Worldwide इज द प्लेस टू नॉक एट द डोर एट. यू विल गेट कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज. सिर्फ इंडिया ही नहीं, विद इन द US भी आपने मूव करना है या आपने दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो, SFL Worldwide इज दे डू हैव यू कवर्ड. सो SFL Worldwide से कॉन्टैक्ट कीजिए. उनकी वेबसाइट सबसे पहले आपको बताती हूँ, SFLWorldwide.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन एंड चेक आउट मोर अबाउट देम, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं 1-800-691-2335. 1-800-691-2335 is the number to SFL Worldwide. Aur isi ke saath, it is time now to connect you with give you the वेदर अपडेट. तो आज है जी मंडे सितंबर द 7th. आई होप कि आपका हॉलिडे अच्छा गुजर रहा है, यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. स्टूडियो में इस वक्त हो रहा है 4:22 PM और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 100 degrees. However, it feels like 108. दिन रहा हॉट सनी, हाईज अराउंड हंड्रेड्स, जबकि हीट वैल्यू इंडेक्स वैल्यूज अप टू 108. आज की शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, लोज इन दी अपर 70s होने वाले हैं. तो इट इज गोइंग टू बी अ हॉट एंड आई गेस ह्यूमिड डे. आज का पॉलन काउंट जो है वो 10.7 है जी, विच इज एक्सट्रीमली हाई. सो अगर आप पॉलन से परेशान रहते हैं तो टेक केयर ऑफ दैट. रैगवीड, एल्म एंड ग्रास इज वॉट इज बॉदरिंग वेयर पॉलन इज कंसर्न्ड. और यूवी इंडेक्स आज का है 9 to 10, which is of course very high as well. So if you have any plans of being outside, please keep your sunscreens handy, keep yourselves hydrated, which is very important. Sunrise aaj ka hua subah 7:04 pe, jabki aaj ka sunset hoga 7:43 PM. It's a unisex song.

और इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट जी कि यूएस डॉलर आज कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो इस वक्त यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे अकॉर्डिंग टू xrates.com. ब्रिटिश पाउंड राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 0.73. इंडियन रुपी 94.54 पे स्टैंड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.38 जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.52 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपाली रुपी 151.33 पे स्टैंड कर रहा है जबकि बांग्लादेशी टका 122.75 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. आज राइट नाउ गोल्ड प्राइस पर आउंस इज $4,406.10 जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $141.66. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में 64 सेंट्स की कमी हुई जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $19.86 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, mess and kids wear.
3: Wait, itna sab aur price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
4: Main hero in hoon.
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: कितने आदमी थे?
11: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

जी हाँ, मैं हूँ किरण. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण ऑन 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. और ये वक्त होता है मंडेज को 4:30 से 5 तक, जब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ माथुर लॉ ऑफिसेज के अटर्नी संजय माथुर जी के साथ. आज ऑफकोर्स इट इज लेबर डे, सो हेयर इज विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लेबर डे फ्रॉम द लॉ ऑफिसेज ऑफ संजय माथुर. और जो है यानी कि माथुर लॉ ऑफिसेज की तरफ से आप सबको लेबर डे की मुबारकबाद. एंड होपफुली नेक्स्ट वीक संजय माथुर जी विल बी हेयर लाइव विद अस टेकिंग योर क्वेश्चंस. एंड यू नो यू कैन कॉल इन एंड आस्क योर क्वेश्चंस. इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू नीड टू डिस्कस विद देम, यू कैन बुक अ कंसल्टेशन बाय गिविंग अ कॉल एट दिस नंबर 214-378-8880. That is the number for to book a consultation. Or you can visit the website mathurlawoffices.com. Har tarah ki sahulat aapko provide ki jati hai. So just give them a call, visit their website to check out more about Mathur Law Offices. Aur isi ke saath ye gana jo aap sun rahe the, taken from the movie Student of the Year. Ye gana mujhe yun yaad aaya ki aaj kal Karan Johar aur Shanaya Kapoor thode sa khabron mein hai. To wo khabar thodi si aapko bata di jaye ki Karan Johar ne jo Shanaya Kapoor ko leke bana rahe hain, wo Student of the Year 3. Aur अगर अभी तक आपको गॉसिप के गलियारों से पता नहीं लगा तो मैं बता देती हूँ कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मूवी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेब सीरीज. जो मतलब जो अभी तक हम देख रहे हैं कि 6 एपिसोड्स बताया जा रहा है कि 6 एपिसोड्स होंगी इसकी. और पहले इसको मूवी के तौर पर बनाया जा रहा था, बट देन इसे OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया. इनिशियली ये कहा जा रहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ लाइट हार्टेड, यू नो, रोमांटिक कॉमेडी काइंड ऑफ वेब सीरीज. लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 गेट्स अ बोल्ड मेकओवर, वेब सीरीज टू बी अ क्लास मीट्स यूफोरिया यूथ ड्रामा. अगर आपने यूफोरिया देखा है तो आप फौरन समझ गए होंगे कि ये डार्क होने वाला है, थोड़ा सा कुछ परेशानी वाली सिचुएशन, बिकॉज यूफोरिया ड्रामा वॉज फुल ऑफ दीज यंग पीपल जो अपने डॉलेंसेस से डील कर रहे हैं और किस तरह से चीजें डार्क हो जाती हैं उनके इर्द, कौन लोगों के अंदर से पर्सनैलिटीज कैसी निकलती हैं. So that is going to be what Student of the Year 3 looks like to be. So it will be very interesting to see ke Student of the Year 3 mein hame kya kuch dekhne ko milega. And of course it is a web series, so something interesting is definitely brewing.

जी हाँ, सुन रहे थे आप राहुल वैद्या की आवाज में ये गाना. और आगे बढ़ते हुए आपको जी एक और अपडेट देती चलो, एक नेटफ्लिक्स सीरीज रिलीज होने वाली है. परिणीति चोपड़ा इज मेकिंग हर सीरीज डेब्यू इन दिस अपकमिंग नेटफ्लिक्स मिस्ट्री थ्रिलर. नाम है शॉक, ट्रस्ट नो वन. मतलब शक ट्रस्ट नो वन. सो जी, ये ग्लोबली प्रीमियर होने वाली है सितंबर 24 को. और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्टारकास्ट हमें नज़र आ रही है. परिणीति चोपड़ा, सोनी राजदान, अनूप सोनी, जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन और भी बहुत सारे लोग. और आपको बताएं जी कि काइंड ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मदर हु इज़ इन सर्च ऑफ हर मिसिंग चाइल्ड. लेकिन जैसे जैसे वो आंसर्स के करीब जाती हैं, इट बिगिन्स टू सर्फेस अ चिलिंग क्वेश्चन टेक्स होल्ड. कैन शी ट्रस्ट द वेरी पीपल हु आर क्लोज टू हर. क्या हुआ था 9 साल पहले और उनका बच्चा कहाँ गया, और वो कौन लोग हैं जो उनके सर्कल में हैं, अपने ही सर्कल में हैं और उनके लिए चीज़ें हो रही हैं मुश्किल. जो क्रिएटर्स हैं उनका कहना है कि शक इज़ अ ग्रिपिंग इमोशनल क्राइम ड्रामा विद एलिमेंट्स ऑफ अ थ्रिलर, बट एट इट्स हार्ट इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मदर्स रिलेंटलेस 9 years सर्च फॉर हर चाइल्ड. द स्टोरी एफर्टलेसली मूव्स बिटवीन द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ अ मदर्स सर्च एंड द टेंशन ऑफ अ टाइटली वुमन थ्रिलर. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच दिस वन. परिणीति चोपड़ा ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो लेट्स होप कि मूवी अच्छी, ये वेब सीरीज अच्छी हो. एंड वी आर गोना गेट टू सी इट ऑन नेटफ्लिक्स स्टार्टिंग सितंबर 24.

गुड वाला इवनिंग, नमस्कारम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो डी एफ डब्ल्यू, वेलकम टू द लेबर डे। जो छुट्टी है जी, आज लेबर डे की है, एंड दैट्स मंडे। वी आर सेलिब्रेटिंग हियर सितंबर 7th 2026। इट्स 5:11 इन द स्टूडियो क्लॉक। काश मैं अपनी हाइट के बारे में कह सकता, बट इट्स ओके यार, पैर जमीन पे लग रहे हैं, आई एम हैप्पी। As every other day, which is Monday to Thursday, I'm going to be with you till 7 o'clock. 7 बजे तक शाम के आपका दूंगा जी पूरा साथ, with some lovely tracks and your conversations, कुछ आपकी खास बातें, कुछ मेरी, and बस इसी को हम बुनो फिरो के, जैसे कहते हैं ना, वो स्वेटर बुनते हैं, इस शो को हम आपकी और अपनी प्रेजेंस के साथ बुन लेंगे यार। Birthdays, anniversaries, joyous moments, कुछ भी आप celebrate कर रहे हैं, तो we'd love to be a part of that. 972-235-5555 is the number to the studio. And I want to share a sad news from our side of the world, which is the Chandigarh St. Stephen School, जहां मैं पढ़ा हूं, उसके principal, the founding member, his name was Mr. Harold Kawa. He is no more. He passed away today in India and leaves us with a lot of sorrow in our hearts, but so much joy, because ek aisa principle jo shayad hi dekhne ko mile, the love that he inculcated, the discipline, the opportunities that he created for us, I will always be thankful to him. Mr. Harold Kawa, from your student here, it is Rest in Peace. Taking you to the first track, let's get the music back on Fun Asia, because that is what we do. Today's evening is a little slower one. Chutti ka din hai, everybody is relaxing. Now I'm going to try and play some soothing songs, some lovely music coming your way. A big shout out to Sunehri Kiran for the lovely sunshine she brings through her shows.

Beautiful track there called Kaafi Hai, and this is from Musafir Cafe, which is now playing on Netflix. If you haven't checked it, go check it out. This part of the show is brought to you by a person that you'll need if you ever are involved in an accident or slip and fall. And this accident, which is sometimes your own fault, sometimes another fault. And किस्मत की बात है यार. It's not something that happens to everybody, but if you are involved in one, आपको एक नाम याद रखना है. उनका नाम है अटर्नी ओमर, एंड इफ यू गूगल हिम विद दैट नेम यू विल आल्सो फाइंड हिज वेबसाइट व्हिच इज attorneyomar.com. दैट्स attorneyomar.com. एंड द रीजन यू नीड हिम, वेल, इफ यू नीड टू क्लेम योर मेडिकल बेनिफिट्स, इफ यू वांट टू क्लेम योर कार का नुकसान, एंड इफ यू हैड जॉब लॉस बिकॉज ऑफ योर एक्सीडेंट, दे विल मेक श्योर दैट यू कंपनसेटेड एंड दे विल फाइट फॉर यू. दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर. अटर्नी ओमर ऑन द वेबसाइट फॉर यू. एक गाना और इसके बाद लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो Only on 104.9 FM. वैसे ना वो डॉक्टर भी गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त हो गए हैं. जो कहते थे ना जीभ दिखाओ आ और लंबी बाहर निकालो आ, पता नहीं भाई ये वक्त के साथ साथ कहाँ चले गए. पर लास्ट वीक मैं गया था डॉक्टर साहिब के पास, उन्होंने मुल्क को बोला था आई हैड सम स्ट्रेप थ्रोट, छुट्टी ली थी मैंने काम से, तो उसने बोला था मुंह खोलो जमान निकालो आ.

0: The Archie is brought to you by Zoya Akhtar, and isme kafi aur log the, Suhana and Khushi, Vedang, Mihir, Agastya, and it was a light-hearted, quick soap type of deal, but acha laga, different change that you could definitely enjoy. We're going to take a short commercial break. On the other side, I do have some giveaways coming for you. Kya jeetenge, kaise jeetenge, batata hun, right on the other side. For now, it is a short commercial break. Be right back after these messages.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ।
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ।
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
14: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
16: अरे यार, घर मिल गया।
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
17: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
17: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

0: देखो यार, मैं एक बात बता देता हूँ कि ये इश्क विश्क है ना, इश्क में कुछ नहीं रखा, नथिंग। ये लव, ये इश्क, यू नो आई फैंटसाइज यू, ब्ला ब्ला, इस सब में कुछ नहीं रखा। जो रखा है फ्रिज में रखा, जाओ खोलो खाओ पियो।
1: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: बंदा ये बिंदास है जी, नाम मारविंदास है। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और आज मौका मिला तो हमने भी लगा दिया चौका। मंडे की शाम है जी, सितंबर की 7 तारीख है, एंड दैट्स द 9th मंथ, 9वां महीना है भैया। अपना ख्याल रखना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, पंजीरी वगैरह खाना, भारी चीज़ें नहीं उठानी, और धीरे धीरे उठना बैठना। हाँ, मुझे तो ख्याल रखना है ना आपका।
1: बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: This part of the show is brought to you by none other than Passion Health Primary Care, जो कि located in multiple locations में in DFW. And if you're looking for a reliable PCP, then these are the people to get with. They will make sure कि आपके सारे जो टेस्ट हैं वो properly किए जाएं. And they spend about 30 minutes with you on each consultation. जी हाँ, 30 मिनट का टाइम आपके लिए निकालते हैं ताकि आपको मेक श्योर कर सके what you are feeling. They go to the bottom of that and then offer their solutions, and they are in a location near you. Google them, and they've got a good plan for you. अगर आपके पास insurance नहीं है, which is your medical insurance, then they have a $85 monthly plan, which is called Passion Health Direct. That includes your primary care, preventive care, medication management, telehealth, and more. Give them a call, 214-666-6259, or find them on the website, passionhealthphysicians.com. That's passionhealthphysicians.com.

0: useless.
1: Okay.

जैसे कि आप मुझे अपने रेडियो में और अपने कानों में सुन सकते हैं, वैसे मैं आपको नहीं सुन सकता। तो आप आंखें भी डालें तो भी मुझे नजर नहीं आएंगी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए यार, पर मैं सिर्फ आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ। दिस इज माई गोल एंड दैट इज वॉट आई डू राइट हियर ऑन फनेशिया, मंडे टू थर्सडे 5 से 7 बजे तक, 5:29 स्टूडियो की घड़ी में, 5:29 सितंबर की 7 तारीख है जी। गर्मी ने तो अपना पता नहीं क्या, कौन से हमारे से बदला ले रही है गर्मी, किस दुश्मनी का बदला ले रही है गर्मी, क्योंकि जाने का नाम ही नहीं ले रही। 99 डिग्रीज द करंट टेम्परेचर, आज का हाई रहा जी अबाउट द सेम एंड द लो विल बी 76, जो कि आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा। कल भी यही हालात है, 98, 80, देन वेंसडे 98, 80 एंड देन थर्सडे थोड़ा सा लग रहा है कि चेंजेस है, 97, एक डिग्री ड्रॉप होगा उधर, 79 हो जाएगा, ताकि आप फीलिंग ले सको कि यू आर इन द 70s। बाकी जिंदगी भी तो ऐसी है ना, इट्स ऑल अबाउट अ फीलिंग। टेकिंग टू द नेक्स्ट ट्रैक, और उस गाने के बाद ले रहे हैं जी आपको टुवर्ड्स द गिव अवे विच इज प्लान्ड अप फॉर यू एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वंडरफुल रेस्टोरेंट जिसका नाम है जनाब फ्यूजन रिपब्लिक। After making waves in Richardson, they are open in Irving. एक आपको मिल सकती है आइटम विच इज़ 1 सीरगा सांबा बिरयानी या फिर मटन बिरयानी और वेजिटेबल दम बिरयानी, चॉइस इज योर्स। बताऊंगा मैं कैसे राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक। हियर वी गो।

0: चिकन फ्रॉम द मूवी जिसका नाम था जी फाइटर, विच हैज ऋतिक रोशन, विशाल शेखर का म्यूजिक एंड बेनी दयाल सिंगिंग दिस ट्रैक अलोंग विद शिल्पा राव. दिस वाज द मूवी दैट डिड क्वाइट वेल. अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस पे, इट वाज अ डिसेंट टर्न आउट. नॉट द बेस्ट बट स्टिल नॉट द वर्स्ट ईदर. यू लिस्निंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो एंड टुडेज डेट वाज 7th ऑफ सितंबर इन द ईयर 1980 व्हेन द 32nd एमी अवार्ड नोटेबल फॉर प्रोसीडिंग डिस्पाइट 51 ऑफ द 52 नॉमिनेटेड परफॉर्मर्स बॉयकॉटिंग द इवेंट ड्यू टू अ स्ट्राइक बाय मेंबर्स ऑफ द स्क्रीन एक्टर गिल्ड. टैक्सी, लो ग्रांट, एड एसनर एंड बारबरा बेल गेट्स were the winners for that one. And in on today's date in the year 1996, rapper Tupac Shakur was shot multiple times in a drive-by shooting in Las Vegas and died 6 years later. A little part of history there for you that I always share in my show. And what a wonderful rapper indeed Tupac was, a revolutionary at his time, somebody who's done plenty of movies and some tracks that are with his fans and followers forever. I'm going to take a short commercial break and break kahan se aage Marvin. पता नहीं आज ब्रैक का मूड हो गया वीरे, थोड़ी चाय ते बिस्कुट भी खवा दो. ब्रैक के बाद मैं वापस आऊँगा. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, टुडे वॉज द डे व्हेन दिस आई हैव नो नेम्स फॉर दिस लेडी एक्चुअली फॉर द गट दैट शी शोड ऑन दैट डे. नीरजा भनोट, 7th of September 1963, द इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट हु saved large number of passengers on board Pan Am Flight 73. We'll talk more about it right after I come back from this short commercial break.
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्ट. Care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen ja

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: कल हिंदी बोल।
3: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
4: Call नवनीता खेमका at 347-449-4242.
5: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

जिंदगी बताए या ना बताए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदगी में ना हर सवाल के ना तीन तरह के जवाब होते हैं, हाँ, नहीं, शायद। लेट्स से समबड़ी आस्क यू अ क्वेश्चन, तो अगर आपको पता है तो हाँ, और नहीं पता तो आप बोलोगे नहीं, और अगर स्पेकुलेशन में होगे तो बोलोगे शायद। पर पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे चौथा जवाब होता है। पंजाब में अगर किसी को कुछ पूछो ना आप कि यार ये शर्मा जी कहाँ रहते हैं, तेनू की लेना, यार ये टायर ट्यूब वाला पता है कहीं, क्यों तू की लेना, तू की लेना है मतलब आपको क्या लेना है इसमें से। ये जवाब पंजाब का जो है ना स्पेशल है, ये हम हर बंदे के लिए रखते हैं जहाँ पे हमें कोई जवाब नहीं देना होता, हमें लगता है कोई बंदा एड़ा टेड़ा है। मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो ग्रीन चैनल से निकल रहा था, मेरे पास हैंडबैग था अपना, और मैं इंडिया जाता हूँ तो हैंडबैग लेके जाता हूँ, कैरी ऑन लेके जाता हूँ, दैट्स अबाउट इट। तो मैं निकल रहा था तो वहाँ कोई सिविल वर्दी में ना बंदा खड़ा था, तो मुझे बड़े शौक से रात को 3 बजे पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? अब पंजाबी बींग पंजाबी मी, मैं कहा तू की लेना। तो बाकी पुलिस वाले भागते हुए कहते हैं यार हमारा बॉस है कस्टम्स का ऑफिसर है। मैंने कहा तो ऐसे बताए ना कि कस्टम्स का ऑफिसर है, मुझे सपना है ना कस्टम्स का ऑफिसर है। सो पंजाबीज आर जस्ट लाइक दैट मैन। एनीवे, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन हिमालयन बाजार। ग्रैंड प्रेरी के लोगों के लिए बेहतरीन न्यूज़ है भाई, इफ़ यू हैव बीन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट योर देसी ग्रोसरीज हलाल मीट, नाउ यू डोंट हैव टू दैट। हिमालयन बाजार इज लोकेटेड राइट ऑन हाईवे 360 एंड हाईवे 20 इंटरसेक्शन, बहुत पास है। स्पेशली इफ़ यू वर इन ग्रैंड प्रेरी, यू वर इन आर्लिंगटन, यू वर इन मैंसफील्ड, यू हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू गेट योर ग्रोसरीज, नाउ यू डोंट हैव टू स्ट्रगल दैट मच। आपको सिर्फ गूगल करना है हिमालयन बाजार। इफ़ यू लिव विद इन अ 5 mile रेडियस, आपको $50 की ग्रोसरी पे कोई डिलीवरी फीस नहीं लगेगी। एवरीडे एसेंशियल्स के साथ शाम को गर्मा गर्म स्नैक्स यानी कि चाय, समोसे, टी एंड कॉफी विद हलाल मीट्स एंड वाटर बफ फॉर माई नेपलीज पीपल। ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, सब कुछ आपको मिलेगा। जस्ट गूगल दिस नेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिमालयन बाजार, स्पेशली इफ यू लिव इन आर्लिंगटन, ग्रैंड प्रेरी एंड मैंसफील्ड, दिस इज योर सोल्यूशन। 5 mile के रेडियस में $50 की ग्रोसरी एब्सोल्युटली मुफ्त है जनाब, सो लुक आउट फॉर दैट। अच्छा जी, नाउ इट्स टाइम फॉर द गिव अवे विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और ये जो गिव अवे है जनाब, दिस इज गोन बी फ्रॉम दिस लवली रेस्टोरेंट जिसका नाम है फ्यूजन रिपब्लिक। आफ्टर मेकिंग वेव्स इन रिचर्डसन, दे आर नाउ इन अर्विंग एंड राइट ऑन वॉल्टन बुलेवार्ड। अगर आप मेरे इस कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे, उसको भागने की ज़रूरत नहीं आपको, बस बैठे बैठे जहाँ भी हैं वहीं से भाग लेंगे आप, और आपको करना क्या है, मेरे सवाल का जवाब देना है। आपने ये कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। अब भैंस के आगे बीन बजाने का आजकल के हिसाब से क्या मतलब है, थोड़ा क्रिएटिवली सोच के अपने अपने जवाबों को कर लीजिए तैयार। जो लगेगा सबसे ज़बरदस्त जवाब उसको मिलेगा जी दिस गिव अवे, विच इज सीरगा सांबा और दम मटन बिरयानी, या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी।

absolutely free. And once again, this is for the Fusion Republic location, which is now open in Irving on 8080 Walton Boulevard. ठीक है जी, सवाल सिंपल सा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, आज के टाइम में अगर भैंस के आगे बीन बजानी है तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। भैंस के आगे बीन बजाना, कोई एग्जाम्पल बताइए कि आजकल के टाइम में व्हाट इज भैंस के आगे बीन बजाना। मेरे पास तो कुछ है ही, वो तो मैं आपको दूंगा ही, बट आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जरा सुने, है ना। हियर वी गो, स्टूडियो का नंबर भैया, पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट इज 972-235-5555।

0: तुमने भी तो फटाफट से वहाँ कहाँ तेमू से ले लिए ना घुंगरू। अगर अच्छी क्वालिटी के घुंगरू लिए होते तेमू के बिना, तब आपको पता लगता कि अच्छी क्वालिटी के घुंगरू क्या होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं टूटते। खैर, हम लोगों की यहाँ उम्मीद नहीं टूटने देंगे। लेट्स गेट टू द कॉलर्स हियर। गुड इवनिंग फनेजा, हू इज दिस?
1: हाय, माय नेम इज आरती।
0: आरती जी, कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बचपन में गिरा हूँ, उसकी चोटें हैं, बाकी अच्छा है, अब ठीक हो गया। आरती जी,
1: चलो बढ़िया है, ठीक हो गया, ये इम्पोर्टेंट है।
0: हाँ, पर वो कभी कभी उभर के बाहर आ जाती हैं, बट दैट्स ओके। आप मुझे बताएं आरती जी कि आपके हिसाब से आज के वक्त को गौर में नजर रखते हुए भैंस के आगे बीन बजाने का क्या मतलब है?
1: जेन जी और जेन अल्फा को 90s के बारे में कुछ भी समझाना इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाना होता है।
0: जेन जी और जेन अल्फा को कुछ भी बताना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। आरती जी, आपका जवाब हमने लॉक कर लिया है। इट्स अ गुड वन एक्चुअली, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट। गुड इवनिंग फनेजिया, रेडियो वॉल्यूम लो, आपका वॉल्यूम ऊपर।
2: नमस्कार
0: बंधोपाध्याय, कैसन हो बाबा?
2: जी सर, ठीक है।
0: ये पीछे का जो रेगुलर रेडियो चल रहा है, इसका कुछ किया जा सकता है? ये तो सर अभी तो कार्ड छोड़ना पड़ेगा सर हमें आपको बंधोपाध्याय भाई, क्योंकि इतने शोर शराबे में तो लोगों के कानों में से मतलब असूर हो जाएगा। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
1: हाय, माय नेम इज श्वेता।
0: श्वेता जी कैसी हैं? कल वाली श्वेता मतलब थर्सडे वाली श्वेता?
1: हाँ जी, हाँ जी, सी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: श्वेता जी, हमने तो आपको मतलब वो जो ठैया होता है गुलाब अपना गोलगप्पे वाला, वैसे ऐसा शौक लगा दिया आपको कि अब ये शो तो आप सुनती हैं हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत रेगुलरली सुनते हैं, मैं मेरी फैमिली सब यही सुन रहे हैं आपकी आपकी।
0: थैंक यू। श्वेता जी, ये बताइए कि आज के जमाने में भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मार्विन से बात करना नहीं इंक्लूडेड, उसके अलावा?
1: नहीं नहीं बिल्कुल। तो मुझे लगता है किसी को एडवाइस देना आजकल के जमाने में बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाना, लाइक अगर मैं अपने बच्चों को कुछ कह रही हूँ कि भाई ये खाओ ये मत खाओ, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आपने, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा खाओ।
0: एब्सोल्युटली सही, ये भी एक अच्छा है, क्योंकि आजकल के जमाने में तो मैं कहता हूँ कि किसी को ना मनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बेवकूफ है तो कोई आपको कहे कि हाँ हाथी उड़ता है तो उसको बोलना हाँ उड़ता है, आज सुबह ही मेरी छत पे आके बैठा था।
1: बिल्कुल ठीक,
0: ठीक है।
1: और आर्ग्यू करना है,
0: आर्ग्यू और किसी को प्लीज करना भी बड़ा मुश्किल है। आप किसी के लिए गर्दन भी कटवा दो ना तो अगला बोलता है थोड़ा सा ऊपर से कटवानी थी यार। थैंक यू श्वेता जी फॉर दैट वन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
3: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ।
0: सईदा जी कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
0: भैंस के आगे बीन बजाना, अपने हस्बैंड से बात करने की बात नहीं इंक्लूडेड हो सकती, ठीक है
3: जी? अच्छा, भैंस के आगे बीन, वैसे तो एक बात ऐसे ही मत बता रही हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओ तो बस घास ही खाएगी ना।
0: भैंस के आगे बीन बजाओ,
3: कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं कहीं, गाड़ी वाले आगे किसी सूरत से नहीं हटते उस लाइन से, कोई भी कुछ भी हो जाए, गलत चला रहे हैं, कुछ भी हॉर्न दो कुछ करो, वो नहीं सुनते लोग।
0: साईदा जी एक्चुअली
3: वो बिल्कुल ऐसे
0: वो रहते ही सूरत में इसलिए नहीं सुनते क्योंकि सूरत से हटके कहाँ जाएंगे। गुड इवनिंग फनेशिया, आपका नाम?
4: जी हेलो
0: जी जनाब, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना बढ़ाओ। कौन बोल? बीवी?
4: अपना बढ़ा दिया,
0: बीवी नहीं हूँ मैं, तो आप ऊंचा बोल सकते हो मेरे साथ।
4: वाह भाई वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, भैंस के आगे बीन बजाना यही है कि बीवी को जो मर्जी बोलते रहो, उसकी करनी अपनी मर्जी है।
0: मशादी भाई बोल रहे हैं?
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: मशादी भाई, थैंक यू फॉर दैट कॉल। एंड मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से, सवाल मेरा आज का कॉन्टेस्ट का ये था, पहले दोबारा सुन ले, कॉन्टेस्ट क्या है कि आपको मिलेगा जी एक मटन बिरयानी या फिर एक वेज दम बिरयानी फ्रॉम फ्यूजन रिपब्लिक, जो कि रिचर्डसन में खुलने के बाद अब अर्विंग में आ चुका है। एंड यू कैन विन वन मटन बिरयानी और वेज दम बिरयानी एब्सोल्युटली फ्री। सवाल ये था कि आज के जमाने में भैंस के आगे बीन बजाना किसको कहेंगे, तो उसमें हमारे को आरती जी ने बोला कि जेन जी और जेन अल्फा को कुछ समझाना है तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। श्वेता जी ने बोला किसी को एडवाइस देना, किसी को एडवाइस लेना बीन बजाने वाली बात है। माशदी भाई बोले बीवी के आगे कोई बात रखना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अब आपके पास अभी भी वक्त है, अगर आप अपनी कोई एंट्री डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो मैं बताऊँ मेरे लिए क्या है भैंस के आगे बीन बजाना। ये जो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगे रहते हो ना, नाइस पिक, लड़कियों की फोटो पर स्पेशली नाइस पिक, वाओ लुकिंग ब्यूटिफुल, इसको कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। आरती जी, यू वन दिस फॉर मी, गिव मी अ कॉल 972-235-5555। लग रहे थे ना, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, नाइस पिक, गॉर्जियस, भैंस के आगे टी नी नी नी नी।
5: स्लो

0: सौदा खरा खरा और आदमी अक्सर रहता है डरा डरा। जैसे मेरा दोस्त फ्राइडे को गया था पार्टी पे, सैटरडे को उसने आके थोड़ा लेट तक सोया, उठा थोड़ा कुछ चबाया, उसके बाद गमलों को पानी देने चला गया बाहर। अब गमलों को पानी दे रहा था, पौधे वौधे उसके पास अच्छा बैकयार्ड है, फ्रंट यार्ड है, तो गमलों और घास को पानी देता है, विच इज़ अ गुड थिंग, मैं भी देता हूँ कभी कभी। बट वो बेचारा सैटरडे का अपना रूटीन कर रहा था, तभी भाभी आई। भाभी ने उनको बोला, जब तुम ये पानी दे लोगे ना, तुम्हारे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो तो शुक्र है आज लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी है, बेचारा दिहाड़ी पे भी नहीं गया, अभी तक भी पानी दे जा रहा है गमलों को, कि वे ख़त्म होगी तो बीवी ने बात करनी है। ब्रेक के बाद आया।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: वी नीड टू टॉक.
4: अब क्या हुआ?
3: Nothing. It's not you.
4: Oh no.
3: It's the distance.
4: Distance? We live 10 minutes apart.
3: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
7: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
7: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
11: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

एब्सोल्युटली बिंदास ही बोलो जी, क्योंकि शो का नाम भी बिंदास है जी, बंदा बिंदास मार बिंदास, ये शो लेके आता है मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट्स 6:06 इन द स्टूडियो। क्लॉक 6:06 मंडे की शाम है जी, और मंडे है तो मन की बात करो, क्योंकि मंडे है और मन को खुश नहीं किया तो क्या किया। इसलिए जो मन में आ रहा है आज करो यार, कॉफी पीने का दिल कर रहा है थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी के साथ पी लो यार, आपको आज शाम को कुछ अपना मनपसंद खाने का दिल कर रहा है कर लो यार, जो भी मन में आए करो, आज मंडे है और मंडे की नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुना भैया। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर स्पॉन्सर्स दैट ब्रिंग यू दिस शो, और उनके बिना ये शो होता है जी इनकम्प्लीट। कुमार शानू अनफॉरगेटेबल 90s शो इज कमिंग, उसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ी ही देर में, पर आपको पहले बता दूं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डाइनिंग प्लेस इन प्लेनो एरिया देन चूज सिग्नेचर रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड ऑन स्प्रिंग क्रीक एंड अल्मा, एंड दिस इज अ ग्रेट रेस्टोरेंट। इफ यू हैवंट बीन देयर आई रेकमेंड यू गो चेक दम आउट। उनकी लैम शैंग निहारी खाइए या उनकी कोई भी बिरयानी खाइए, यू विल फॉल इन लव विद देम। एंड साथ साथ उनके पास एक बैंकवेट हॉल है फॉर ऑल योर इवेंट नीड्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर सिजलिंग ग्रिल्स या क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो वो बनाते हैं, एंड डू ट्राई देयर जिंगर बर्गर एज वेल, माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, एंड बर्थडेज हो एनिवर्सरीज हो या स्पेशल सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो ऑफर यू दैट बैंक्वेट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। स्प्रिंग क्रीक एंड आल्मा ईस्ट प्लेनो में लोकेटेड है जी। signaturecuisine.net इज द वेबसाइट, सिग्नेचर क्यूजीन लीविंग इट्स सिग्नेचर ऑन एवरी टेस्ट। कहते हैं जी कि बॉस की डांट और बीवी की डांट सिमिलर होती है, नहीं यार बहुत फर्क होता है, किसने कहा सिमिलर होती है, बॉस की डांट और बीवी की डांट में बहुत फर्क है, क्योंकि बॉस की डांट के बाद आप जो है नौकरी बदल सकते हो, पर बीवी की डांट के बाद करवट भी बदल लो ना, वो भी बड़ी बात होती है। आए बड़े

0: गलत फहमियां हो ना तो उसको खत्म कर लेना चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में अगर गलत फहमियां हो तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। पति बड़ा सियाना आदमी, बीवी से गलत फहमियों में बहस चल रही थी, बोला चलो बात खत्म करते हैं, गलत फहमियों को ही आग लगा देते हैं। पत्नी कहती है ठीक है दो मिनट रुको, मैं पड़ोसन को लेके आई। बंदा ये बिंदास है जी, नाम अरविंदास है, बाकी आप देख लो, पड़ोसन ऊपर रहती है, नीचे रहती है, साइड पर रहती है, या पड़ोसी का चक्कर है, तो जो भी गलत फहमी है उसको आग लगा दो आज। ले आओ साड़ी पहनी हो तो ज़्यादा इजी रहेगा काम, बाकी आपकी इच्छा है। 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो में, 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, मंडे की शाम है, सितंबर की 7 तारीख है, लेबर डे की छुट्टी है, पर हम ऐसी लेबर हैं हमारे को लेबर डे भी छुट्टी नहीं मिलती भैया। खैर कोई बात नहीं, जो काम करेंगे ज़बरदस्त करेंगे, अच्छा करेंगे, ताकि आप लोगों को आए जी फुल ऑन मज़ा, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर हेयर फॉर यू, टेकिंग यू टू द अगला गाना विच इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा द मूवी एंड द सॉन्ग्स आर ऑलवेज रिफ्रेशिंग।
1: Eres tú, ¿dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido a toda mi vida con tu querer.
2: Name Samcha, name Jana, yo vi tu nemo seca, señorita.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: यहाँ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
12: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panasia.
13: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
14: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
13: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
14: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.